dinlendirmiştir.

एक इंसान का किया था जिसकी यूनिवर्सिटी

जस्टिस के लिए बोलना चाहूंगा।

इतने कमजोर हो गए कि निरंजन नदी को पार करते वक्त दुख गवा के पास पार नहीं कर सके। फिर बड़ी भारी नदी में मुश्किल से गले गले पानी रहा हो, क्योंकि नदी उस नदी में गांव से दुख पार किए कई बार जाकर देख लिया। उसने टीबी का मरीज

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 8वीं तिथि तदनुसार 29 जून सन 2026। इस समय सुबह के 8:54 और 29 सेकंड्स हुए हैं। हमारी आज की सभा शुरू होती है।

आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है एफएम बैंड 103 दशमलव 7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम विवरण में लीजिए सुनिए हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

आज सुबह 9:10 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस गान, 9:20 पर भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनेंगे कुछ भक्ति रचनाएं, 9:40 पर गैर फिल्मी गीत एल्बम सॉन्ग्स में आप सुनेंगे अल्ताफ राजा के गए कुछ गैर फिल्मी गीत,

फिल्म संगीत आपको सुनवाया जाएगा 10 बजे, गाने पुराने ज़माने के, और 10:30 पर आप सुनेंगे गाने नए, तराने नए। शाम 6:05 पर सुनिए फिल्म संगीत, और इसके साथ ही रात 9 बजे सुनवाए जाएंगे दर्द भरे गीत फिल्म संगीत के अंतर्गत। शाम 5 बजे युवा दोस्तों के लिए होगा युवाणी कार्यक्रम, और 5:30 पर बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर होगा शाम 6:20 पर। किसान भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे खेतीबाड़ी शाम 7 बजे। रात 8 बजे आप सुनेंगे सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत दिल से। 8:30 पर रात आप सुनेंगे विविधा में झलकी स्कूल।

ये था हमारे आज के प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हम आकाशवाणी नागौर के चिरवे चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में, 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित, श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ

0: आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी ने प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में बनने वाली रिफाइनरी देश और प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 4 जुलाई को होने वाले प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर कल बालोतरा के पचपदरा रिफाइनरी परिसर और प्रस्तावित जनसभा का दौरा कर निरीक्षण किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान की बहुप्रतीक्षित परियोजना से क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
2: पश्चिमी राजस्थान में एक ऐतिहासिक काम होने वाला है, कई वर्षों से जिसका इंतजार कर रहे थे और ये राजस्थान के भाग्य को बदलने वाली हमारी ये रिफाइनरी, हमारे युवाओं को रोजगार देने वाली हमारी ये। आज मैं यहाँ रिफाइनरी में आया हूँ, मैंने यहाँ व्यवस्थाओं का देखा है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, बाड़मेर बालोतरा में रिफाइनरी का उद्घाटन होने जा रहा है जो आपको इंतजार था। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया।
0: गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 4 जुलाई को देश के ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य के 59,217 बूथों पर बच्चों को दवा पिलाई गई। ये अभियान आज और कल भी जारी रहेगा। अभियान के तहत राज्य के करीब 1,04,00,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत आज और कल स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को खुराक पिलाएंगी। इसके लिए 75,000 से अधिक टीमें बनाई गई है, जिनमें मोबाइल और ट्रांजिट टीमें भी शामिल है। ये टीमें बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ईंट भट्टों और दुर्गम क्षेत्रों में मुस्तैदी से काम कर रही हैं, ताकि कोई भी बच्चा दवा से वंचित न रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह योजना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की सोच पर आधारित है। इसका मकसद जन्म से 3 साल तक के बच्चों को घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और

0: फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा आज जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में जन सहभागिता और उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मदन लाल शर्मा होंगे। समारोह की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री मदन दिलावर करेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने वाले 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 154 भामाशाह, 99 प्रेरक और 23 NRI दानदाता शामिल हैं। इन सहयोगियों द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 में प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार के लिए 318 करोड़ रुपए का उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। देश भर में आज महान सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महान लोबिस की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम अनब्लॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा। प्रदेश में भी इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पाली जिले में सांख्यिकी विभाग द्वारा प्रशासनिक आंकड़ों के प्रभावी उपयोग पर कृषि विभाग के सभागार में चर्चा आयोजित की जाएगी। वहीं करौली जिले में आंकड़ों के महत्व पर जिला स्तरीय कार्यशाला रखी गई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सांख्यिकी केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं बल्कि जिले के विकास की दिशा तय करने का सशक्त माध्यम बन रही है। करौली में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, कृषि, पोषण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग में प्रशासनिक आंकड़ों का उपयोग लगातार बढ़ा है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जा रही है और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है। सांख्यिकी दिवस पर आयोजित होने वाली कार्यशाला में प्रशासनिक आंकड़ों के बेहतर उपयोग के माध्यम से सुशासन और विकास को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष चर्चा होगी। भाग्यवारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली।
0: प्रदेश में इन दिनों मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार वर्तमान में मॉनसून गुजरात की उत्तरी सीमा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों से होकर गुजर रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मौसम की बात करें तो डबोक में सबसे अधिक 33 मिलीमीटर, प्रतापगढ़ में 10 और पिलानी में 7.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान का श्रीगंगानगर 44.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा बीकानेर में 43.2 और जैसलमेर में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया। आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान जोधपुर और बीकानेर संभागों में तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया के सेशल्स में कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के पहले दिन प्रदेश में 61,15,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। आज और कल टीमें घर घर जाकर दवा पिलाएंगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में 276 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। और प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्मी और पूर्वी इलाकों में उमस से जनजीवन प्रभावित। श्रीगंगानगर में पारा 44 डिग्री पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी नागौर का ये चिरमी चैनल है। सुबह के 9:11 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस गान।

कोप भवन में बैठी रानी कैकई ने पति के कभी के दिए हुए दो वर मांगे हैं, एक भरत को राजतिलक और दूसरा राज्य और कुटुंब आदि की ओर से उदासीन विरक्त मुनियों की भांति राम का 14 वर्षों तक वन प्रवास। राजा दशरथ सहम गए हैं, सहसा कुछ कहते नहीं बना, मानो वन में बाज बटेर पर झपट पड़ा हो। कैकई ने राजा के मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को नृशंस हथनी की तरह जड़ से उखाड़ फेंका है। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धैर्य धारण कर आंखें खोली तो प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई पड़ी जैसे म्यान से निकलकर नंगी तलवार खड़ी हो। राजा ने जी कड़ा करके अत्यंत नम्रता के साथ रानी को प्रिय लगने वाली वाणी में कहा, हे प्रिय, भरत और रामचंद्र तो मेरी दो आंखें हैं, मैं सवेरे ही दूत भेजकर भरत और शत्रुघ्न को बुलवा लूंगा और शुभ मुहूर्त निकलवाकर सब तैयारियां करके डंके की चोट भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा गहरा प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे बड़े का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूं, राम की माता ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे पूछे बिना राम को युवराज पद देने की तैयारी कर ली थी। तुम तो स्वयं भी राम पर स्नेह रखती हो। हे प्रिय, अब हंसी और क्रोध छोड़कर उचित अनुचित का विचार करके दूसरा वर मांग लो, जिससे मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरित मानस गान आकाशवाणी नागौर का। ये चिरवी चैनल है। 9:21 हुए हैं। लीजिए भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में सुनिए कुछ भक्ति रचनाएं। पहले सुनिए चरणजीत सिंह सोंदी की गाई ये भक्ति रचना।

आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी नागौर की चिरवी चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9:40 हुए हैं। लीजिए गैर फिल्मी गीत एल्बम सॉन्ग्स में सुनिए कुछ गैर फिल्मी गीत। आज के कलाकार हैं अल्ताफ राजा।

करेगा कौन? इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, इस घर की देखभाल को वीरानियां तो हूँ, जाले हटा दिए तो हिफाजत करेगा कौन?

0: प्रत्येक सोमवार को रात्रि 8 बजे सुनिए सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम दिल से। इस कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजने के लिए आपको लिखना है अपने पसंदीदा गीत के बोल, फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।
1: लीजिए प्रोग्राम का अगला गीत सुनिए, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म फिर वही दिल लाया उसे।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: लीजिए अब हम आपको सुनवाते हैं खलनायक फिल्म का गीत, मोहम्मद अजीज, मनहर उदार।

आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया गीत सुनिए, फिल्म का नाम खेल खेल में।

फिल्म संगीत के प्रोग्राम में भी आप सुन रहे थे गाने पुराने जमाने के। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। 10:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए गाने नए तराने नए। प्रोग्राम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और राकेश पंडित की आवाजों में। फिल्म का नाम ओमकारा।

युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 015 बयास

लीजिए अब सुनिए फिल्म डेड इश्किया का ये गीत, इसे गाया है रेखा भारद्वाज ने।

लीजिए अब सुनिए स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म का गीत, इसे गाया है अलका याग्निक और इला अरुण ने।

0: श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।
1: फिल्म संगीत के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे गाने नए तराने नए। यह आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल है। 11 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण मुंबई केंद्र से।

आकाशवाणी नागौर के सिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शंकर महादेवन की आवाज में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: इस पारंपरिक गीत को आप सुन रहे थे अदिति सिंह शर्मा और दिव्य कुमार की आवाजों में। सूफी जॉय एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनवाया।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से गजल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानुलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपने आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: शकील आजमी की लिखी ये गजल आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और रेखा भारद्वाज की आवाजों में, तुम बिन टू फिल्म से। इसे हमने लिया अंकित तिवारी का संगीत।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में यह अगला गीत।

तलत अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे कतील शिफाई का ये कलाम, और तलत अजीज ने ही संगीत से सजाए गिफ्ट ऑफ सॉन्ग एंड गजल्स इस एल्बम से ये गीत हमने आपको सुनाया। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं हम साथ साथ हैं फिल्म से ये गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीता फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में यह अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत फतेह अली खां का संगीत, फिल्म कच्चे धागे।

समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS रीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारी

0: तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थयात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमरीका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आरोप फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल सपन जगमोहन के संगीत के साथ, अभी तो जी लें। इस फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी तो जीलें फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना भी काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन। और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। मधुरोह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: आंखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। आंखियों के झरोखों से इस फिल्म से गीत आपने सुना। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और उन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

ahead.

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आए जब चाहे चली आए, रूस महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माई नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: वाली, तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माई नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: राइट।

0: अरे जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी, सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप

सुन रहे हैं। और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। फिल्म आन मिलो सजना, सुनिए ये गीत।

विविध भारती के बाकी प्रोग्राम्स आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार के बाद। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। दिन का एक बजने को है अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से।

0: जयपुर अजमेर केंद्र है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। शेखावाटी क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना के लिए आज राज्य के हरियाणा सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ये मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल की मौजूदगी में हुआ। समझौते पर हस्ताक्षर के समय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। 33,379 करोड़ रुपए की इस परियोजना से हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से राज्य के शेखावाटी इलाकों तक भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से यमुना का पानी पहुंचाया जाएगा। इससे चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के शहरों और गांवों में पेयजल आपूर्ति बेहतर होगी तथा कृषि कार्यों के लिए भी जल उपलब्ध हो सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज का दिन दोनों प्रदेशों के लिए ऐतिहासिक दिन है। प्रधानमंत्री के संकल्प के कारण ही इस प्रोजेक्ट में प्रगति हुई है।
2: निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखे, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से रुकी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की परस्पर सहयोग और भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सबसे अच्छे में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब है, जहाँ राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनते हैं। हरियाणा और राजस्थान के संबंध केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं, हमारी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं। हमारी बोलियां, हमारी परंपराएं, हमारी लोक संस्कृति, हमारे सामाजिक सरोकार सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों राज्यों के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। ये समझौता उस आत्मीय संबंध को और अधिक दृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े ने कहा है कि प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं थी, बल्कि यह व्यवहारिक जीवन और समग्र विकास से जुड़ी हुई थी। राज्यपाल ने आज जयपुर के एक निजी विश्वविद्यालय में भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आयोजित 5 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से देश के सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया। प्रदेश में लगभग 43 दिनों के लंबे ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से सभी सरकारी और निजी विद्यालय फिर से खुल गए हैं। भीषण गर्मी के कारण शिक्षा विभाग द्वारा इन छुट्टियों को आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ स्कूलों में नए विद्यार्थियों को जोड़ने और ड्रॉपआउट बच्चों को वापस मुख्यधारा में लाने के लिए प्रवेशोत्सव का दूसरा चरण भी शुरू हो गया है। इसके तहत शिक्षक वार्ड पंचों, सरपंचों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर घर घर जाएंगे। प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में भी अवकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही स्कूली विद्यार्थियों की चहल पहल शुरू हो गई है। ग्रीष्मकालीन अवकाश की समाप्ति के बाद आज से राजस्थान न्यायालय सहित राज्यभर के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में नियमित जनसुनवाई फिर से शुरू हुई। अब न्यायालयों का कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई, नए प्रकरणों की पेशी और अन्य न्यायिक कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे। जैसलमेर में पर्यटन और रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए यूआईटी मूल सागर क्षेत्र में गोल्डन ओएसिस फार्म हाउस योजना शुरू करेगा। इस योजना के तहत 142 फार्म हाउस भूखंडों और 46 व्यावसायिक दुकानों की खुली नीलामी की जाएगी। यूआईटी को इस योजना से 22 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर आज सुबह एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार यह दुर्घटना दूदू क्षेत्र के महला गांव के पास सुबह करीब 5 बजे हुई। चित्तौड़गढ़ स्थित सांवरिया सेठ मंदिर के दर्शन कर जयपुर लौट रही एक बस का एक्सल टूटने के कारण उसे सड़क किनारे खड़ा किया गया था। इसी दौरान पीछे से आए एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस खड्डे में पलट गई। पुलिस ने घायलों को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में भिजवाया है और फरार ट्रक की तलाश की जा रही है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस परीक्षा के लिए राज्यभर से 3,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से 2 लाख 80,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। परीक्षा के दौरान कुल 75% उपस्थिति दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार, हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
0: हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चंद्र से बोल रहे हैं। 1:05 हुए हैं, लीजिए फिर से सुनिए विविध भारती।

दुलारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली। उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियां, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गईं। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखाया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं हमारे साथी ने कहा कि सच्चे दिल की आवाज बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूठ कर खुद से ही मान जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं हमारे साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया, ये गाना उन्होंने बताया। और आगे लिखा कि किसी की जिंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है। गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं हमारे साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है, बाकी राज्यों की अपेक्षा ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्यौहार आज मनाया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि इबारत की आखिरी लाइने जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनोवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी जिंदगी में आए, बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था। पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा, हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में जरूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज्म ही लिखी, ए दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो। राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरे को रोशन कर लो। किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे, एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो। तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो। झुंझलाकर अगर कभी दूर हो जाओ, मायूस ना करो, फिर से मान जाओ। वहीं हमारे एक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं। देखते हैं उनकी और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट के में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नजर आ गए हैं जो हमारी लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा, तो कुछ दिल की बातें हो जाए। दिल से बहुत उम्मीदें होती हैं इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा। एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है, और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है, दिल समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए। धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं। तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो काम करके ही रहते हैं, और किस तरह से करते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता। ये सब बातें आप बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

दो दुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफर जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हो हिम्मत न हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर तेरी पुकार पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे कि ओह एक बार फिर उबाओ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए हैं इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक थीम पर लगाए गाना रहने चाहिए, क्योंकि एक थीम रहे या एक शब्द दे दिया जाए ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी एक तरीका होता है, अपना एक माहौल होता है कह सकते हैं हम। तो इस कार्यक्रम को कुछ इसी तरह से चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे शब्दों वाला एक इबारत आप तक पहुंचा दी जाती है और आपको उनमें से शब्द चुनने होते हैं जिनमें गीत आते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग चीजें भी होती रहनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रेमी दिलों को प्रोत्साहित करती ऊर्जा स्रोत रूपी इबारत ने प्रेम रस उड़ेलती सलाह भी है और सांत्वना भी। प्रेम प्रसंगों में रूठने मनाने के सुंदर संक्षिप्त चित्रण व सुलभ समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम के लिए हम श्रोतागण बेकरार है, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत, कह रही है कि दिल की आवाज सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में है जो सीधे दिल को छू रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने, या दिल धड़कने का सबब याद आया जो दिल को छू कर निकला, दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी आ सकती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि इसमें संगीत किसका है, फिल्म का नाम भी बताइए।

काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना, आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार। मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर, सजाऊं जीवन का साज, दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास। मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वहीं हमारे और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे एक और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाए हैं, राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें, किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना, दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे, सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए, ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किसे भी तो भेजिए ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज टीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, इस टोली के आदमी हैं हम। तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए, क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं नहीं उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें, और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

0: अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहां अपना रिश्ता होता है वहां ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हो, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हो, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप, ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारे और साथी कह रही हैं कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वही हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे, दिल कुछ कहता है दिमाग कुछ कहता है, और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दुन की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों के लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए
2: कहिए
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा है और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाज से। ये हमारे सवाल का सही जवाब है और हमारे साथियों ने भी सही जवाब दिया। हमारे एक साथी से हमने पूछा ना, दो दुनी चार फिल्म का गीत सुनवाते हुए कि भाई कभी किसी दिल की वजह से कभी पिटने की नौबत आई क्या, तो कुछ किस्सा साझा करें। तो हमारे साथी ने भी लिखा है कि बदमाश दिल ने किसी को पिटवाया है तो वो अपनी कहानी साझा करें, लेकिन हमारे साथियों का तो कुछ और ही कहना है। वो कह रहे हैं कि अगर दिल के सुनकर पिटने की नौबत आई या नहीं उसी को यहाँ उजागर करेंगे, तो कार्यक्रम के दौरान ही शायद पिटने की नौबत जरूर आ सकती है। तो कोई बात नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने सभी साथियों को, इसलिए आप ये किस्सा हमसे साझा ना करें। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब दिल धड़कता है तो ऐसा लगता है कोई अपना हमारे पास आ रहा है, जब अपना हमारे सामने होता है तो दिल कुछ कह ही नहीं पाता। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे मिस्टर जल्दी नाराज हो जाते हैं और मेरी पोती भी जल्दी रूठ जाती है, तो दोनों को ही मुझे मनाना पड़ता है और वो जल्दी से मान भी जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि जल्दी मान जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनका कहना है इस कार्यक्रम के बारे में कि आज आप हमारे पिटने की बातें क्यों कर रही हैं, ये तो सोचिए भला अपनी इज्जत का फालूदा कौन करवाएगा। भाई ठीक है, हम तो बिल्कुल माफी मांगते हैं कि ये बात आप ना साझा करें कि कभी पिटने की नौबत आई थी या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि औलाद द्वारा मन के विरुद्ध किए गए काम थोड़ी मुश्किल पैदा करता है, माँ बाप सबसे तर्क कर सकते हैं, कार्यरत जवान बच्चों से नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज नेटवर्क साथ नहीं दे रहा इसलिए वो इस कार्यक्रम में ज्यादा साथ नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आप कार्यक्रम सुन रहे हैं तो भी कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भैया आज हेलो फरमाइश में फोन लगा रहे हैं, इस वजह से उनका पूरा ध्यान वहां है, तो बस हमारी यही कामना है कि आपका कॉल लग जाए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल और दिमाग का हिसाब किताब बहुत अलग अलग होता है, जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी

गलती नहीं समझ जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

अनाड़ी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। यही हमारे सवाल का सही जवाब, हमने किसकी आवाज में गीत सुन रहे ये पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि

रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे, सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा एमबीबीएस यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही, और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज़।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में है वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूं अपने दिल के हाथों। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हैं, इन्हें तो कुछ पता नहीं, बस जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते, पर एक बात तो है, हम रूठें और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूं, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूं। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे एक और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते हैं कार्यक्रम, गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं, दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना, इसलिए जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से

गीत शामिल हुए आप सभी ने बताया ही नहीं, कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपकी लिस्ट में से ये तो बताइए। हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारी कौर साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है। वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं, बताइए किसने लिखा ये गीत।

जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जाजा मेहंदी अली खां के बोल, ओपी नैहर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कहने की जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है, इसलिए

सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले घुटती चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे?

हर बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है। लेकिन हमारे यहां जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी मां बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं न कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिएं जिसमें किसी तरह का कोई अभाव ना हो, कोई परेशानियां ना हो, लेकिन बच्चों को ये आजादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं। बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, और फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
3: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
5: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
6: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
7: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्ट्राक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।
9: हम थे वो थी हम थे,
10: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हन्ने हन्ने हन्ने प्यार हो गया। हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना।

यार हो गया ओ मनु तेरा हुआ अब।

0: முடு முடுக்கே வா வா வா हमसे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना याने याने याने प्यार हो गया
1: ओ मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा मन्नू तेरा हुआ अब मेरा क्या होगा।

0: प्यार हो गया।
1: चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार और अनूप कुमार की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे। हसरत जयपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे।
4: T-A-T, cat. Cat माने बिल्ली।
5: R-A-T, rat. Rat माने चूहा।
4: C-A-T, cat. Cat माने चूहा। अरे

0: GOAT, goat, goat माने बकरी, LION, lion, lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?
1: Hey, made, made.

आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, रवि का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: बम्बई का बाबू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशा भोसले की आवाज में आप सुन रहे थे लाजवंती फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

मुकेश की आवाज में बेदर्द जमाना क्या जाने फिल्म का गीत आपने सुना। भरत व्यास ने इसे लिखा, कल्याण जी वीरजी शाह का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको सुनवाते हैं शैलेंद्र का लिखा गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजें, फिल्म उजाला।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न

0: यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ यारो सूरत हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ಸಹೇಲಿ
1: सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, है ना।
2: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
1: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
2: जी,
1: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहें, खुशहाल हाँ। रहें, हरे भरे रहें। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
2: जी।
1: तो तुम समझ गई होगी कि आज क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
2: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूजकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले
1: हाँ उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहां पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते हैं तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना नेहा
2: जी। बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
2: भाई देखिए, तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
1: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहाँ पे अभी नहीं ली वहाँ पर भी लेगी, तो क्यों ना पहले एक गीत सुनते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं।
2: ये गीतों के माध्यम से हम हर जगह बरसात को न्योता दे रहे हैं।

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे।

0: एक आज की कसर,
1: जी
0: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
1: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसापूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्ज्वल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी हैं, काम के धनी नहीं हैं। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने ना किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं।

0: महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिख कर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था। शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे। लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
1: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
2: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
1: हाँ,
2: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
1: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की मां नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
2: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए। मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
1: खूब समझ रहा हूं, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
2: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है, सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
1: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
2: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष लड़की वालों का है न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए। बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
2: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ, सही है।
3: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
4: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
3: हाँ, मेरा तो यह निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूं। मैं उसे तोड़ना चाहूं भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूं, ये रुपये लूं तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी ना सकूं।
1: अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति ना बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
3: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
0: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहां महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
3: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी, हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
2: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
3: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता, और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
0: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया। उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
5: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको

0: मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
1: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
2: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी मुवक्किल का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
3: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
3: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
4: वाह वाह वाह वाह, यहां भी चलते हुए?
2: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
4: बेटा परमानंद, जरा यहां तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
0: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना, अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
2: वो ये कागज था? मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
0: मुझे मेज पर नहीं मिला।
2: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
3: अरे भाई ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
4: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
3: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है।
1: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदानंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया। गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं? मुझे यही आश्चर्य है। लीना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
4: मक्कार का मुंह काला।
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है। बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
7: तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
8: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे।
7: जी।

0: तो मंजरी जी सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेंजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी क्लब रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है, और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ही जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर लत में बदल जाता है, और ये जो लत है वो बड़े नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है, निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार में हो तो तनाव पैदा हो जाता है, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली। और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है, तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो निहा किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और निहा जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है, आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तंबाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग

0: काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी की, संगीत के साथ आप कर सकते हैं, या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ ना कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, और व्यवहार संबंधी व्यसन। तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए, यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है, इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए, या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है, छोड़ना फिर भी आसान है लेकिन छोड़े रहना छोड़ा मुश्किल है। वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उससे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुनाई ही दी है,
1: तो ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन
0: भाई,
1: की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी, है ना
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है। इस
1: जी।
0: गीत से भी संदेश मिलता है। और देखो, जब विवाह जो है वो बंधन नहीं, रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो
1: हाँ
0: यह है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं, बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहां केवल दो लोग ही नहीं, बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आदतें और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए, है
1: वाकई
0: ना?
1: मंजरी जी। और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है, और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो
1: वही
0: भी अच्छा
1: सब
0: है।
1: है
0: और दोनों
1: जी।
0: को पहल करनी पड़ती है
1: हाँ
0: रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ
1: हाँ।
0: थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएं, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताए, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई कोई जो है वो कैद नहीं है, बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का सम्मान समान सम्मान होता है, समान अधिकार है, और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए, तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि
0: हाँ,
1: छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है, और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जरतारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है। उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है, जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है। और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं, बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं, क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं, तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं, लेकिन संवाद, धैर्य और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने, संजो और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का

0: दर्जा देना थोड़ा समय लगता है, ये लड़कियों के लिए भी नया होता है। ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
1: तो वो
0: एक घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है,
1: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं, विवाह बंधन नए रिश्तों को समझे, आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए नेहा।

0: और सब बातें भी हो जाती हैं,
1: बिल्कुल
0: लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही है।
1: बिल्कुल है, और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, ना कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभा पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया
0: और
1: था।
0: हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं, तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
1: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए। शादी के बाद वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे को बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाएं। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर,
0: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है, चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो, ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए, हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें, और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें, क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
1: मूल मंत्र है,
0: विवाह को अच्छी तरह से बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
1: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
0: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे,
1: तो चलो पहले गाना सुना देते।
0: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए. अच्छा अच्छा
0: चलो
1: है
0: फिर
1: ना.
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे। और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई और

0: इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल, और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पिसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो हैं वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर धीमी आंच पर इसको तब तक भूने जब तक मिश्रण पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा ना हो जाए। और इसमें आप नमक भी डाल दीजिएगा, नहीं मालूम पड़ा नमक भूल गए, है ना। और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने जो मैदे का आटा तैयार किया था उसकी लोई बनाइए, दाल को भरिए और कचौड़ी को धीमी धीमी आंच पर आप तल लीजिए, है ना। और इसको खाया जाता है आलू की रसेदार सब्जी के
1: वो
0: साथ।
1: हम रेसिपी बताएंगे, पर एक बात यह है कि आपने कहा ना कि कहीं नमक डालना भूल गए, अगर भरावन में आप नमक डालना भूल गए तो बिल्कुल भी बुरा मत नहीं, जिसको आईबीपी हो उसे आप खिला सकते हैं बड़ी आसानी से।
0: हाँ, लेकिन जिसको नमक जिसको फीकी लगेगी वो कहेगा ना ये क्या बना दिया।
1: तो आलू की सब्जी के लिए उबले हुए आलू चाहिए 4 से 5, हाथ से आप उसको बड़े टुकड़े कर सकते हैं। टमाटर 2 बारीक कटे हुए, हरी मिर्च 2-3 बारीक कटी हुई, अदरक 1 इंच, हींग आधा छोटा चम्मच, मसाले चाहिए 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ और मेथी का दाना आधा छोटा चम्मच, और पाउडर जो मसाले चाहिए वो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बाकी दोनों 1-1 छोटा चम्मच आप डाल सकते हैं, और नमक आपके स्वाद के अनुसार, अमचूर पाउडर भी इसमें डालिए 1 छोटा चम्मच, और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला तेल आपको 2 बड़े चम्मच लगेंगे, सरसों का तेल अगर डालें तो बहुत अच्छा लगेगा, हरा धनिया बारीक कटा हुआ चाहिए। तो तेल गरम किए कढ़ाई में, हींग, जीरा, सौंफ और मेथी दाना डालकर उसको तड़काइए, और इसमें कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और कटे हुए टमाटर डाल दीजिए, और टमाटर थोड़ा नरम होते तक इसको पकाना है। फिर हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल दीजिए, और मसालों को तब तक भूनिए जब तक तेल ना छोड़ दे। फिर इसमें आलू डालिए हाथ से फोड़कर, और आलू डालने के बाद थोड़ी देर 1-2 मिनट तक उसको अच्छे से चलाइए, और उसके बाद 2-3 कप पानी डालिए। अंत में आप अमचूर पाउडर डाल दीजिए, और गरम मसाला डालना है तो भी डाल सकते हैं, हरा धनिया डालें। गर्मा गर्म आलू की सब्जी तैयार है, कचौरियां तो बन ही चुकी हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो आप दोनों ये सारी चीजें खाइए, और देखिए समय ऐसा बता रहा है कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए,
0: बिल्कुल
1: जी।
0: तो अब कार्यक्रम से लेते हैं विदा, तो सभी को मंजरी वर्मा और
1: नेहा शर्मा का नमस्कार।
0: Thank you.

0: की सहेली।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रो इंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो IBS के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारी जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज अ लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हो तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड्स ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था IBS, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है। तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द। एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए।
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहाँ मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है। स्पेशली जब हम रात को सो जाए, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है। कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज बदल जाती है। तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ENT को जाके देखते हैं, ये गला खराब है। ENT जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहां से खाने की पाइप शुरू होती है वहां पे काफी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है। तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा के गले में कुछ अटका हुआ है। तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स।
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
2: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन के दवाइयां लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं, और एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाई नहीं होती थी तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। क्योंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूं कल रात को, ठीक से सोया हूं कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैंने नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूं अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
0: जी, हमारे एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
1: गट फ्लोरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन्स होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई हैं, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया
0: जी। तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
1: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
0: दही
1: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू टेक, यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
0: जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
1: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्ज का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
0: क्या बात है, आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगेन पेशेंट जब हमारे पास आते हैं दवाई नहीं देनी है, हमने पहले एक्सरसाइज देनी है। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपके कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम ना, साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है। तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी,
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ

0: पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
1: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटिन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
1: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
0: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत रिग्रेस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
1: जी, तो मतलब पेट की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
0: बिल्कुल पड़ सकता है
1: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
0: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसका भी पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? हाँ। बोले हमको खाना पचता नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है, जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं। तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट sort of पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है। तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाए, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
1: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
1: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
0: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है, ये गाना फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
1: जी,
0: और काफी सुना है हमने
1: जी।

0: डॉक्टर साहब, बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी, वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो, या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो
1: हाँ
0: आगे
1: बिल्कुल
0: चलकर।
1: बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से, या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है, और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है, जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था, अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर्स इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: हाँ, तो
0: दीजिए।
1: बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते हैं, जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं। हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेते कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, ये क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में एक पाइप डाल देते हैं और पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है, और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है, एक बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH मैनोम pH probe बोलते हैं, जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतरी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि अगर IBD की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
0: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब, एक गाना सुनते हैं पहले, यहाँ
1: शायद मेरी शादी का ख्याल
0: सुनते हैं डॉक्टर साहब, ये गाना।

0: बिल्कुल नहीं, तेरी कसम आऊंगा।
1: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
2: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड, हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, कि कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा ना लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
2: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ये पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन आल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
1: जी, जी।
2: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि ये माइग्रेन ना हो,
1: क्योंकि
2: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो, अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपना हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स, इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
1: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
2: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
1: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
2: तो अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिंस कैन कॉज एसिडिटी। तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है, तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो इफ यू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी जी जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
2: बिल्कुल
1: तो,
2: बिल्कुल
1: या बिल्कुल। फिर जो लोग नहीं लेते उन्हें भी होता है तो? हाँ,
2: तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है, एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। द ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल एंड नॉन अल्कोहल पेशेंट को पूछ के हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए, वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ द फूड पाइप द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे। धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो तंबाकू खाओ तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं, ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है आपने दूसरी बीमारी डाली है तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
2: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है।

0: एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा दिखता है, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है, और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता है, ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर के ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां हैं, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात आई कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खा के, तला हुआ खा के, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
1: जी जी, और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है तो दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईबीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
0: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ, एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
1: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को, मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी? हाँ, या तो कुछ नहीं,
0: नहीं नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
1: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
0: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज ऐसा सेंसिटिव थिंग, अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
1: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
0: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो,
1: चले चलो लगान का,
0: लगान का,
1: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

0: डॉक्टर साहब, आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्या है।
1: हाँ, तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बाहर। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल जा रहा है ये तेल अच्छा है, ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो, ये गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है। खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाईज है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासीटामोल है, 500 ml पैरासीटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है,
0: बिल्कुल,
1: और
0: स्टेरॉइड भी आ रहा है
1: स्टेरॉइड्स
0: आजकल
1: भी
0: आप
1: आता
0: बता रहे
1: है।
0: हैं।
1: और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वॉलो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देके फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजीली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट। इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।
1: थैंक यू, नमस्कार।
2: तो ये था सुप्रसिद्ध गैस्ट्रो एंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब आज का सेहतनामा कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के ठीक 5 बज रहे हैं। अब युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।

नई सोच से बदलें दुनिया, नया सवेरा लाएं, हर कदम पर सीखते जाएं, हर कदम पर सीखते जाएं, सपनों को सच बनाएं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी और मैं हूं आपकी अपनी आरजे दोस्त नेहा नारायण सोनी। दोस्तों, हर नई सुबह अपने साथ नए अवसर, नई उम्मीदें और नई प्रेरणा लेकर आती है। युवाणी का उद्देश्य भी यही है कि हम मिलकर ऐसी बातें करें जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए, हमारे विचारों को नई दिशा दे और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो तैयार हो जाइए ज्ञान, मनोरंजन और संगीत से सजे इस खूबसूरत सफर के लिए। आज के कार्यक्रम में होंगी प्रेरणादायक बातें, उपयोगी जानकारी और दिल छू लेने वाले खूबसूरत गीत। तो आज की बात का हमारा सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, जो कि हर वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। यह दिन देश के महान स्टैटिस्टिक विद्वान प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत वर्ष 2007 में हुई थी। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि सही आंकड़े किसी भी देश की प्रगति और योजनाओं की सफलता के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आज सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, जनसंख्या और अर्थव्यवस्था से जुड़ी योजनाएं तैयार करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का उपयोग किया जाता है। यदि सही आंकड़े उपलब्ध हो तो नीतियां भी अधिक प्रभावी बनती है और उनका लाभ सही लोगों तक पहुंचता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक को विकास की मजबूत नींव माना जाता है। दोस्तों, इस टॉपिक पर हम हमारी बात जारी रखेंगे, लेकिन आइए उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार को युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत होता है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमें ईमेल कीजिए हमारी ईमेल आईडी youthexpressnagore@gmail.com पर। इसमें आप लिखिए अपनी पसंद की फिल्म का नाम, गाने के बोल, आपका नाम, आपके शहर या गांव का नाम और भेज दीजिए हमारे ईमेल आईडी पर youthexpressnagore@gmail.com पर। और सुनिए अपने पसंदीदा गीत।

दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे के बारे में, तो इसके इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर पीसी महानोबिस को भारत में आधुनिक स्टैटिस्टिक्स का जनक माना जाता है। उन्होंने भारतीय स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूशन की स्थापना वर्ष 1931 में की थी। भारत के हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना भी स्टैटिस्टिक्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। दोस्तों, आज मौसम का पूर्वानुमान, चुनावी सर्वेक्षण, खेलों के आंकड़े, मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन खरीदारी तक में स्टैटिस्टिक्स का उपयोग होता है। डिजिटल युग में डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी सफलता की सही आंकड़ों पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय स्टैटिस्टिक्स दिवस हमें यह संदेश देता है कि सही जानकारी और सटीक आंकड़ों से ही बेहतर निर्णय लेने की बड़ी शक्ति मानी जाती है। जब आंकड़े विश्वसनीय होते हैं तभी देश की योजनाएं प्रभावी बनती है और विकास की गति तेज होती है। दोस्तों, अब चर्चा करेंगे डेटा विश्लेषण के क्षेत्र में देश के विकास के बारे में। तो आज का समय डेटा यानी जानकारी का युग है। हर दिन करोड़ों लोग मोबाइल, इंटरनेट, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं। इनसे मिलने वाले आंकड़ों का सही विश्लेषण करके देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत में डेटा विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस का उपयोग सरकार और निजी संस्थाओं द्वारा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, यातायात और वित्त जैसे क्षेत्रों में डेटा के आधार पर बेहतर निर्णय लिए जा रहे हैं। इससे योजनाएं अधिक प्रभावी बन रही हैं और उनका लाभ सही लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई, आधार और ई गवर्नेंस जैसे पहल देश में बड़ी मात्रा में डेटा उपलब्ध हो रहा है। इस डेटा का विश्लेषण करके सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी और तेज बनाया जा रहा है। वहीं उद्योग जगत में ग्राहकों की जरूरत को समझने और नए तकनीक विकसित करने के लिए डेटा विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस का सहारा लिया जा रहा है। दोस्तों, इस पर चर्चा हम अपनी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये शानदार सा गीत।

0: युववाणी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को सुनिए फरमाइशी कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने। श्रोता अपनी फरमाइश प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को शाम 4:45 से 5:10 तक हमारे फोन नंबर 01582-240-168 पर फोन करके नोट करवा सकते हैं। आपकी फरमाइश का गीत उसी शाम युववाणी प्रोग्राम में प्रसारित किया जाएगा। ध्यान रहे, इस कार्यक्रम में स्थानीय पुराने नागौर जिले के श्रोता ही कॉल करें और सुने कार्यक्रम, फोन करें, गीत सुने।
1: दोस्तों, इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे डेटा विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिसिस के बारे में। तो डेटा एनालिसिस के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। डेटा एनालिसिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस एनालिसिस्ट और एआई विशेषज्ञ जैसी नौकरियों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। इसके लिए गणित, कंप्यूटर और तार्किक सोच का ज्ञान उपयोगी माना जाता है। कुल मिलाकर डेटा एनालिसिस्ट देश के विकास की नई ताकत बनकर उभर रहा है। सही डेटा और उसका प्रभावी विश्लेषण भारत को तकनीकी रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दोस्तों, अब बात करेंगे खेल गतिविधियों के बारे में। तो जून माह की खेल गतिविधियां कुछ इस प्रकार है कि खेल प्रेमियों के लिए जून का महीना रोमांचक और उत्साह से भरपूर रहा है। देश और दुनिया में कई बड़े खेल योजनाओं ने दर्शकों को भरपूर मनोरंजन दिया है। बात करेंगे क्रिकेट की, तो क्रिकेट की दुनिया में आईसीसी महिला T20 विश्व कप का रोमांचक मैचेस शुरू हो चुके हैं, जिसमें भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अभियान की मजबूती शुरुआत कर ली है। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इन सब गतिविधियों की जानकारी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और गाना।

दोस्तों बात कर रहे थे खेल गतिविधियों की, तो खेल प्रेमियों के लिए जून का महीना रोमांचक और उत्साह से भरपूर रहा। क्रिकेट की दुनिया में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप का रोमांच शुरू हुआ और भारतीय पुरुष टीम ने भी अपने अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। फुटबॉल प्रेमियों के लिए सबसे बड़ी खबर रही फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आगाज। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में खेले जा रहे इस विश्व कप में दुनिया की शीर्ष टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही है और नॉकआउट मुकाबलों ने रोमांच को और बढ़ा

0: लिया है। टेनिस में फ्रेंच ओपन के बाद सभी की निगाहें विंबलडन पर भी है, जिसकी शुरुआत जून के अंतिम सप्ताह में हुई। घास के कोर्ट पर दुनिया ने दिग्गज खिलाड़ी खिताब जीतने के लिए तैयार रहे। दोस्तों यहां लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक और सुनेंगे ये गीत।
1: दादी कौन सा प्लांट है?
2: टैंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
3: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
1: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
3: क्यों?
1: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
3: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

0: दोस्तों इसी गाने के साथ मैं नेहा नारायण सोनी लेती हूँ आपसे विदा, मुलाकात होगी जल्द ही, तब तक के लिए नमस्कार।
1: ये कैसे बाल कटाते हो, गाड़ी तेज चलाते हो, तुम जल्दी में क्यों खाते हो? गिव मी अ ब्रेक।

श्रोता अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवाणी FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

कभी कभी छोड़ देना ही बेहतर होता है, जैसे कि वो सवाल जिसका जवाब न हो, वो हाथ जो वक्त पर साथ न हो, वो रिश्ता जहाँ

फर्स्ट भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मैं मिलने आया जो हर वर्ष आज के दिन मनाया जाता है, इसलिए कई लोग विश्व सांख्यिकी दिवस और भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस में भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि विश्व सांख्यिकी दिवस प्रति 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। दुनिया भर में मनाए जाने वाला ये दिवस हमारे समाज, नीतियों

0: राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का ये जो दिन है, भारत में सांख्यिकी के जनक माने जाने वाले प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष आज के दिन मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का विषय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष रहा था, जो भारत में साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और शासन का समर्थन करने वाले विश्वसनीय और समय पर सांख्यिकी प्रदान करने में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण योगदान के दर्शाता है।
1: समझा करो
0: डार्लिंग। सखियों, आइए जाने कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कि हम प्रति 5 वर्ष में एक बार मनाते हैं, इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाने के क्रम में इसे पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था। यह दिवस हर वर्ष नहीं मनाया जाता, बल्कि हर 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। मनाने के क्रम में पिछली बार ये वर्ष 20 अक्टूबर 2025 को मनाया गया था, और आगामी जब मनाया जाएगा तो इसे आगामी 20 अक्टूबर 2030 को इसे पुनः मनाया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में बनाया गया है। तो ये थी आज के हमारे कार्यक्रम की शुरुआती चर्चा। आज की बात में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि आज पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से मनाया जा रहा है, उसके बारे में कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।

फिल्म का नाम, अपना नाम और अपने शहर या गांव का नाम, और भेज देना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 9649004762 पर। शाम 5 बजे तक प्राप्त आपकी फरमाइशों का प्रसारण किया जाएगा उसी रात 8 बजे आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है दिल से।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत। एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का, मेरी प्यारी बहनों का स्वागत अभिनंदन। सखियों, जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से तो खत्म ही हो जाती है, परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियों को ईश्वर को सौंप दें, वे आपका ज़रूर कल्याण करेंगे। बस इस पॉजिटिव सोच के साथ हमें जीवन में हर परेशानी का डटकर मुकाबला करना है। तो ये थी हमारी कुछ बातें और हमने देखा आज की बात में हमने चर्चा की राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में। अब एक बार लिए चलते हैं आपको फिल्म संगीत की बेहद खूबसूरत सुरीली दुनिया की ओर और सुनवाते हैं फिल्म सत्यमेव जयते से आतिफ असलम तुलसी कुमार की आवाज़ में ये बेहतरीन गीत।

0: आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से सुनिए फरमाइशी फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश प्रत्येक गुरुवार और प्रत्येक शनिवार को रात 8 बजे। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक गुरुवार को दिन में 12 बजे से दिन के 1 बजे तक। हमारे फोन नंबर्स हैं 015-82-240-168। वैसे तो ये प्रोग्राम सभी श्रोताओं के लिए है, लेकिन हम स्थानीय नागौर जिले के श्रोताओं को प्राथमिकता देते हैं। तो हो जाइए तैयार अपनी फरमाइश हमें भेजने के लिए और कीजिए फोन हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है हेलो फरमाइश।
1: आप सुन रहे हैं चिरमी चैनल का एक बेहद खूबसूरत और महिलाओं का खास कार्यक्रम महिला जगत। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। सखियो, आज की हमारी जो कार्यक्रम में अगली चर्चा है उसका विषय है बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी बहुत ज़रूरी। जी हाँ सखियो, लंबी समर ब्रेक के बाद अब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं। ऐसे में हमें खुद को भी तैयार करना होगा कि बच्चे पॉजिटिव और एनर्जेटिक वाइब्स के साथ फिर से अपने विद्यालय से जुड़े। बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में उनकी नींद का रूटीन फिक्स करना होगा, उसको बच्चा सही से नींद ले सके, टाइम से उठ सके। रात में ही हमें यूनिफॉर्म बैग एट्सेट्रा तैयार करना होगा। साथ ही हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि बच्चे के लिए पोषक जो नाश्ता है वो बनाए, लंच बॉक्स रेडी करना भी इन सब चीज़ों में शामिल है। ये तैयारी बच्चों को मानसिक रूप से स्ट्रांग और सुबह की भागदौड़ से मुक्त रखती है। साथ ही छोटे बच्चों को पहली बार स्कूल भेजना भी एक बहुत बड़ा कदम होता है। कई बार जो मम्मी होती हैं वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो बच्चों के सामने ही रोने लग जाती है, और छोटे बच्चे तो बहुत ही मासूम कोमल से बच्चे वो अपनी मम्मी को देखकर रोने लग जाते हैं। तो प्लीज़ मेरी सखियों, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं समझ सकती हूँ कि बच्चों को, जो बच्चे हमारे पास 3-4 साल तक रहते हैं फिर अचानक से जब वो स्कूल जाते हैं तो जो 5-6 घंटे उनका स्कूल टाइम है उसमें उनसे अलग रहना किसी पीड़ा से कम नहीं है, लेकिन हमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना होगा। तो आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करें और बच्चों को ऐसा पॉजिटिव वाइब्स दें, उन्हें ऐसा बताएं कि वहाँ पे भी उन्हें अच्छा ही लगेगा, ताकि जब वो स्कूल जाए तो उनको कुछ भी अलग ना लगे। ऐसे में आप बच्चों को स्कूल जाने के लिए मानसिक रूप से तैयार करें, उनकी नींद और सुबह की जो उनकी दिनचर्या वो उसे अच्छे से सेट करें और स्कूल जाने को एक सकारात्मक और मज़ेदार अनुभव के रूप में प्रस्तुत करें। उन्हें अपनी कुछ ऐसी छोटी छोटी स्टोरीज बना के सुनाएं जिसमें उन्हें ये अच्छा लगे कि हाँ, स्कूल जाना जरूरी भी होता है और अच्छा भी लगता है और हमारे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी है। छोटे बच्चों को स्कूल भेजने और तैयार करने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अपना सकते हैं, जैसे कि कुछ छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अगर हम उन्हें फॉलो करें तो ना तो हम मदर्स को, हमें गार्जियंस को कोई परेशानी होगी और ना ही हमारे उन नन्हे मुन्ने बच्चों को। सखियो, सबसे पहला जो काम है मानसिक रूप से तैयार होना। जी हाँ, इसमें दोनों ही शामिल है, एक पक्ष है बच्चे का और दूसरा पक्ष है हमारा, हम अभिभावकों का। पॉजिटिव माहौल बनाएं बच्चों के लिए। स्कूल जाने से पूर्व ही हम बच्चों को अन्य लोगों के साथ या फिर दूसरे बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना है ये सिखाएं, क्योंकि हमारे घर में हो सकता है वो सिंगल चाइल्ड हो या फिर सिर्फ दो ही बच्चे हो या बहुत कम बच्चे हो, बहुत ज्यादा लाड प्यार से रहता है घर में अपने बच्चे को, सभी लोग जो बड़े होते हैं वो बहुत प्यार से रखते हैं, लेकिन बाहर वो बच्चा थोड़ा सा एक मेचोरिटी शो करे, बच्चे को हमें वैसा बनाना है। स्कूल की दिनचर्या भी बनाएं, जैसे कि इसका मतलब ये है कि रात में बच्चे को जल्दी से भोजन करवा दें और उन्हें टाइम से सुला दें, उनका एक शेड्यूल फिक्स कर दें, क्योंकि अगर बच्चा रात में ज़्यादा देर तक जागेगा तो वो सुबह उठने में लेट करता ही है, ताकि क्या होगा कि बच्चा सुबह जब उठेगा तो एकदम तरोताज़ा महसूस करेगा, उसको भरपूर नींद लेने का वो आनंद महसूस करेगा और फ्रेश होकर अच्छे से उठेगा, ताकि उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी नींद में कोई कमी हुई है या मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, और वो अपने आप को एनर्जेटिक भी फील करेगा स्कूल जाने के लिए। उन्हें समय पर उठना, ब्रश आदि करना, जो रूटीन के काम होते हैं मॉर्निंग के वो करवाना, नाश्ता करना भी सिखाएं। भले ही वो थोड़ा टाइम लगाएंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हमें ये स्कूल बच्चा जब जाना शुरू करता है, हमारा बच्चा नया जब पहली बार स्कूल जाना शुरू करता है, तब से ही हमें ऐसी छोटी छोटी टिप्स उनको सिखा देनी चाहिए, ताकि बच्चा धीरे धीरे 1-2 साल में एकदम तैयार हो जाता है अपने सारे छोटे मोटे काम, ताकि मदर्स को भी हेल्प मिलती है और इसके साथ ही बच्चा भी थोड़ा कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट फील करता है। और एक सखियो जो एक बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन अक्सर देखने में आता है कि पेरेंट्स क्या करते हैं कि अक्सर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि दूसरे बच्चों के साथ अपने बच्चे की कंपैरिजन करते हैं, जैसे किसी भी चीज़ में कि वो बच्चा इतना एक्टिव है और आप ऐसा नहीं करते, वो ऐसा करते हैं। तो ऐसा हमें सिखियो हमेशा हमें स्कूल जो बच्चे का है उसे स्कूल से परिचित करवाते रहें, स्कूल के बारे में बताते रहें, ताकि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे बच्चा अगर पहली बार स्कूल जा रहा है तो बच्चे को पहले हम स्कूल ले जाके विजिट करवा दें, वहाँ के टीचर्स स्टाफ वगैरह से मिलवा दें। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी टिप्स अपनाकर हम ये सारा काम कर सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते फिल्म संगीत की दुनिया में, सुनवाते हैं सोनू निगम श्रेया घोषाल की आवाज़ में ओम शांति ओम का ये गीत।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महिला जगत सखियो। आज है सोमवार और सोमवार का हमारा स्पेशल टिप्स होता है किचन टिप्स। जी हाँ, जिसमें हम आज लेकर आए हैं कि लंच बॉक्स हो स्वाद और सेहत भरा। जी हाँ, बच्चों की स्कूल ओपन हो चुकी हैं, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बच्चों का जो भोजन है, जो वो स्कूल में जाकर करेंगे, जो हम घर से बनाकर उनके लिए भेजते हैं, वो स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी हो, ताकि हमारा बच्चा चुस्त और मस्त रहे।

सर, क्यों बच्चों के टिफिन के लिए ऐसे कई विकल्प हम चुन सकते हैं, और जिनसे बच्चे जो हमारा भोजन हम पकाएंगे वो काफी पौष्टिक होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होगा और जल्दी भी बन जाएगा। आप पौष्टिक और झटपट बनाने वाले ऑप्शन जैसे कि मिक्स दाल पराठा, वेजिटेबल उपमा, पोहा चीज पराठा, फ्राइड राइस या फिर बेसन का चीला, ये सभी काफी हेल्दी होते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं, आसानी से बना सकती हैं। बच्चों के लंच बॉक्स को हमेशा अलग, पौष्टिक और आकर्षक बनाने के लिए कुछ बेहतरीन आइडियाज हैं मेरे पास, चलिए शेयर करते हैं आपके साथ। सिक्योर, पौष्टिक, हेल्दी, टेस्टी, आसान से पराठे कैसे बनाए जाते हैं, चलिए जानते हैं। वैसे मेरी सारी सखियां वाकिफ है, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स तो हम आपस में शेयर कर ही सकते हैं। सिक्योर, सादा पराठा तो सभी देते हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं और अगर खाने में कुछ नाटक करते हैं, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, वो अच्छा नहीं लगता, पहले तो बच्चों के मन में एक पॉजिटिव आप एक चीज भरें कि जो भी चीज मम्मी बनाती है आपके लिए, घर के बड़े बनाते हैं, वो आपके लिए हेल्दी है और आपको जरूर से खाना चाहिए। फिर भी बच्चे नाटक करें तो आप क्या कर सकते हैं, आप खाने के मतलब जैसे जो पराठा बनाते हैं उनके अंदर मिक्स कर दें, जैसे कि आप सादा पराठा देने के बजाय आलू और पनीर को मेश करके स्टफ्ड पराठा बना दें, टेस्टी भी लगेगा और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या भरा गया है। इसके अलावा पालक और चुकंदर हालांकि कलरफुल लगते हैं, बहुत सुंदर, लेकिन कई बार बच्चे इनको खाने के लिए बहुत नाटक करते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि पालक चुकंदर अगर आटे में मिक्स करके पराठा बनाते हैं तो ये कभी हरा बनेगा, कभी गुलाबी पराठा बनेगा, जो काफी हेल्दी रहेगा और इसके साथ ही बच्चों को पसंद भी आएगा। क्रिस्पी लच्छा पराठा, प्लेन पराठा या फिर दही, अगर आटे में आप दही से उसको उससे आटा लगाते हैं तो वो भी काफी टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। चावल की रेसिपी भी बच्चों को पसंद भी आती है और हेल्दी भी रहती है, तो आप पुलाव बना सकते हैं, जीरा राइस बना सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव बना सकते हैं, इडली भी बना सकते हैं, जल्दी भी बन जाएगी और बच्चों को अच्छी भी लगेगी और हेल्दी भी होगी। इसके अलावा आप पोहा, उपमा और आटा नूडल्स भी बच्चों को काफी पसंद आते हैं, वो भी बना सकते हैं। कई बच्चों को मीठा खाने का शौक होता है, तो छोटी मोटी ऐसी जो फ्राइड या फिर रोस्टेड कुछ मीठा आइटम बना सकते हैं, उसमें आप हलवा भी बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, बच्चों को ब्रेकफास्ट में काफी अच्छी लगेगी। और साथ ही अगर नमकीन उनको पसंद है तो नमकीन वेजिटेबल का चाट बना सकती हैं, भुने चने का चाट बना सकती है, ड्राई फ्रूट्स का चाट बना सकते हैं, मीठा और नमकीन दोनों तरह का। और इसी तरह से सैलेड भी आप अलग अलग तरीके से काट के बच्चों को टिफिन में रख सकती है, ब्रेकफास्ट करवा सकती हैं। और ये सारे तैयारी मम्मी को या जो आप गार्जियन हैं आपको रात में ही करनी होगी ताकि सुबह की दौड़भाग से आप बच सके। तो ये थे किचन टिप्स में हमारी कुछ चर्चा आपके साथ। अब आपको लिए चलते हैं संगीत की दुनिया में, और हमने चुना है एक बहुत ही प्यारा सा गीत जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने और फिल्म का नाम है पीके।

श्रोताओं, अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बज रहे हैं। लीजिए सुनिए हिंदी में समाचार।

0: Sevasthara Medal, Vayu Sena Medal, Seva Nivrit.
1: Air Marshal Sunit Kashinath Vidhati, Ativishi Seva Medal, Yudh Sena Medal and Vayu Medal, retired. Receiving.
2: इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: Major General Gurpreet Singh, Ati Vishisht Seva Medal, Sena Medal, Vishisht Seva Medal.
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुता उन खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं, साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा

0: काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों के लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:05 हुए हैं। समय हो चला है फिल्मी गीतों के कार्यक्रम फिल्म संगीत का, तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति जिसे हमने लिया है फिल्म मैं हूं ना से। इसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी का ये गाना, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने और इस गीत को लिखा है रानी ने।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं फिल्म मेजर साहब का ये गाना, जिसे गाया है उदित नारायण ने और संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम FM 103.7 MHz पर। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के 6:20 हुए हैं। समय हो चला है लोकगीतों के कार्यक्रम माटी के स्वर का। तो आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं धीरा सेन का गाया ये लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम माटी के स्वर FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: शाहजहांपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच एमओए हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। और दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन को लेकर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट एमओए किया गया। आज नई दिल्ली में ये एमओए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच हुआ। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। एमओए पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि समझौते के तहत मॉनसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथिनी कुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। परियोजना के निर्माण के लिए करीब 3,900 करोड़ रुपए की लागत से हथिनी कुंड बैराज से चूरू तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इससे पेयजल के साथ ही सिंचाई के लिए पानी की सुविधा मिलेगी।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने इस दिन को भावनात्मक बताते हुए कहा कि ये केवल एक समझौता नहीं बल्कि लाखों परिवारों की बरसों पुरानी आशाओं, विश्वास और संघर्ष की जीत है। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के विकास, जल सुरक्षा और समृद्ध भविष्य का नया अध्याय लिखेगा। इससे जल्दी ही धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इस समझौते पर और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी।
2: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर, चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: शेखावाटी क्षेत्र की बरसों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में आज हुए एमओए से सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों में खुशी का माहौल है। लोगों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को बड़ी राहत देने वाला बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में वीर जवानों और सशस्त्र बल कर्मियों को असाधारण वीरता, साहस और विशिष्ट सेवाओं के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में मातृभूमि की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले कई जाबाजों को मरणोपरांत भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोटा के श्रीनाथपुरम स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की गई इन सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्ट भी शामिल है। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि कोटा बूंदी क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए वैश्विक स्तर की सुविधाएं देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
3: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गांव में हो शहर में हो सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहां पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रोक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉकवे भी उनके लिए बना है।
0: श्री बिरला ने सियाम सभागार में प्राकृतिक खेती पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला को भी संबोधित किया। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने और नवाचार करने का आह्वान किया। राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन ने संसद भवन में इन्हें शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल है। राजस्थान से डॉ अलका सिंह ने भी आज शपथ ली। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी उपस्थित रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्रों को भी 10वीं कक्षा में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय मातृभाषा का अध्ययन करते हुए अपनी विदेशी भाषाओं को जारी रखने की अनुमति होगी। 30वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह आज जयपुर में आयोजित किया गया। बिड़ला सभागार में हुए इस समारोह में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा जगत के 276 दानदाताओं और प्रेरकों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री बैरवा ने दानदाताओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भामाशाहों की ये भावना समाज के प्रति उत्तरदायित्व और सेवा का प्रतीक है। इससे हजारों विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में सहायता मिलती है। जयपुर के आमेर क्षेत्र में एक दीवार ढहने से 3 मजदूरों की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा आज दोपहर में ताला मोड़ के पास एक होटल में बन रहे एसटीपी प्लांट की दीवार गिरने से हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए। जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक ने मौका मुआयना किया। मीडिया से बातचीत में श्री पटेल ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसकी विस्तृत जाँच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
4: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जांच का विषय है और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी, पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के आमेर क्षेत्र में दीवार गिरने से हुए हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। हालांकि मॉनसून के पहुंचने में हो रही देरी से अधिकतर हिस्सों में उमस का असर बना हुआ है। कुछ हिस्सों में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी राजस्थान में मॉनसूनी गतिविधियां पश्चिमी भागों के मुकाबले अधिक सक्रिय रह सकती है। अगले कुछ दिनों में अलग अलग इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बरसात का दौर जारी रह सकता है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और 2 से 5 जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इस दौरान कोटा और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है।
5: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
0: केंद्र सरकार ने देश में स्वास्थ्य प्रणाली को काफी मजबूत किया है। इसके लिए व्यापक प्रयास किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नागरिकों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच संपर्क के पहले बिंदु के रूप में 186,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। सरकार ने बेहतर इलाज के लिए प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच संबंध मजबूत किए हैं। देश भर में 23 नए एम्स और विशेष रूप से कम सुविधा प्राप्त और पिछड़े जिलों में 157 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के साथ तीसरे स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूत किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यमुना जल बंटवारे को लेकर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOA हुआ। इस ऐतिहासिक जल समझौते से 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के प्रदेश में आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल, जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंचने के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से डीग जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आरजू शर्मा ने तैयार किया है। डीग जिले में इन दिनों जनकल्याणकारी योजनाओं, कृषि, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यावरण और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। प्रशासन विभिन्न योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास पर काम कर रहा है। आइए जानते हैं जिले की प्रमुख गतिविधियों के बारे में। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर जिले में आमजन के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों को रोटावेटर अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र खरीदने पर अनुदान दिया जा रहा है। इससे किसानों को खेती की लागत कम करने और समय की बचत करने में मदद मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन शिविरों को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान भी शुरू हो गया है। अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों की आयु के 187,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो बूथों के अलावा बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विशेष टीमों की तैनाती की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जिले में नशा मुक्त भारत सप्ताह का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान रैलियां, शपथ ग्रहण कार्यक्रम, जागरूकता संगोष्ठियां और नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं और आमजन को नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई तथा नशा मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले में 16 जून से 31 जुलाई तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आशा सहयोगिनी और एएनएम कार्यकर्ता घर घर जाकर 5 वर्ष तक के बच्चों वाले परिवारों का सर्वे कर रही है। परिवारों को ओआरएस और जिंक की दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है, साथ ही माताओं को डायरिया से बचाव और उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। अभियान का उद्देश्य मानसून के दौरान बच्चों को डायरिया से सुरक्षित रखना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले में योग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आयुष विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर रैलियां और योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग के अनुरूप लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और नियमित योग करने के लिए प्रेरित किया गया। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अनेक काम किए गए। विभिन्न स्थानों पर फार्म पौंड, रिचार्ज शाफ्ट और जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इन कार्यों का उद्देश्य वर्षा जल का अधिकतम संग्रहण और भूजल स्तर में सुधार करना है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तहत जिले में उल्लेखनीय काम हुए। विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में भूजल खारा है, वहां फार्म पौंड के माध्यम से वर्षा जल का संग्रहण किया जा रहा है। इससे खेती और बागवानी कामों को लाभ मिल रहा है। किसान सोलर पंप और ड्रिप सिंचाई पद्धति का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे पानी की बचत हो रही है। स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में डीग शहर में मालीपुरा रोड पर फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है। इस संयंत्र के माध्यम से घरों से निकलने वाले अपशिष्ट का उपचार किया जाएगा। इससे जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सड़क सुरक्षा को लेकर भी जिले में अभियान चलाया जा रहा है। डीग पुलिस द्वारा विशेष ग्राम गोद योजना के तहत गाँव में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने और यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी दी जा रही है। साथ ही दुर्घटना में घायलों की सहायता करने वाले लोगों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि की जानकारी भी दी जा रही है। भीषण गर्मी से राहत देने के लिए डीग शहर में इको कूलिंग सेंटर विकसित किए जाएंगे। इन केंद्रों पर आमजन को विश्राम, शीतल पेयजल और ओआरएस की सुविधा उपलब्ध होगी। इन केंद्रों में प्राकृतिक वेंटिलेशन और सौर

0: पहले खास समाचार। यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौताओं 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी और दिखनाद आथोनी मानसून रे प्रदेश में आवन सारू परिस्थितियां अनुकूल जुलाई रा पहला हफ्ता में पुगण रा आसार। समाचार रे साथ है मैं शंभु सिंह रबे समाचार विगतवार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज यमुना जल परियोजना ने बनावण और लागूकरण ने लेर मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट MOA करीजियो। आज नई दिल्ली में ओ MOA राजस्थान और हरियाणा सरकार रे बिचेवियो। मीटिंग में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद रिया। MOA माथे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा रा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दस्तखत करया। ई मौके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कयो के करार रे तहत मानसून रे दौरान राजस्थान रा हकरो पानी भूमिगत पाइपलाइन री मार्फत हथिनी कुंड बेराज उ सप्लाई करियो जायला। परियोजना री बनाई चुनाई सारू कोई 3,900 करोड़ रुपया री लागत उ हथिनी कुंड बेराज उ चूरू ताई पाइपलाइन बिछाई जायला। एणु पीवण रा पानी रे साथ ही पाणत सारू पानी री सुविधा मिलेला।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू सीकर झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: मुख्यमंत्री श्री शर्मा ई दिन ने भावनात्मक बतावता कहो कि वो फगत एक करार नहीं है बल्कि लाखों परिवारों री साल पुरानी आस विश्वास और संघर्ष री जीत है। वणा कहो कि वो ऐतिहासिक कदम राजस्थान रा विकास पानी री हिफाजत और समृद्ध भविष्य रो नुआ पाठ लिखेला। एणु बेगाई जमी माथे काम शुरू वे जायला। ई करार माथे और जानकारी दे रिया है मारा खबर नवीस जितेंद्र द्विवेदी।
2: यमुना जल समझौता राजस्थान और हरियाणा के लिए विन विन सिचुएशन और संवाद से समाधान का एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे पानी से जुड़ी लगभग 3 दशक पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। इस समझौते के बाद सीकर चुरू और झुंझुनू तथा हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था होगी। इसके तहत जुलाई से अक्टूबर तक 58 करोड़ घन मीटर पानी यमुना नहर से 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। गौरतलब है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना पर 1994 में सहमति बनी थी, किंतु 3 दशक से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी इस पर कोई कवायद नहीं हो पाई थी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: शेखावाटी हलकारी बरसा पुराने पीवण रा पानी री समस्या रा निपटारा कानी आज वियो MOA रे पछे सीकर चूरू और झुंझुनू जिला में खुशी रो माहौल है। लोगा इन महत्वाकांक्षी परियोजना ने मोटी राहत देवन वाली बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रक्षा अलंकरण जलसा रा दूजा चरण में वीर जवाना और सशस्त्र बल कर्मिया ने असाधारण वीरता साहस और 28 सेवा में सारू इनाम दिया। राष्ट्रपति भवन में विया ई जलसा में मातृभूमि री हिफाजत में ठावो बलिदान देवन वाला कई वीरा ने मरण रे पछे सम्मानित करी जिया। ई मौके उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सशस्त्र बलारा ठावा एहलकारी मौजूद रिया। वो सम्मान देश री आतंकवाद उग्रवाद और सरहदी हल्का में चुनौतियां रे खिलाफ बरोबर लड़ाई ने दर्शावे है। साथ ही विमानन समुद्री अभियाना और मानवीय मिशना में दिखाई जी असाधारण बहादुरी ने मान्यता दी जावे है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम में न्यारा न्यारा खेल सुविधाओं रो लोकार्पण करियो। कोई 4.5 करोड़ रुपया की लागतों विकसित करी जी आ सुविधाओं में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक और बास्केटबॉल कोर्ट भेड़ा है। ई मौके श्री बिरला कहो कि कोटा बूंदी हलकारा खिलाड़ियां सारू वैश्विक थरी सुविधा देवन री कोशिश करी जावे।

0: कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गांव में हो शहर में हो सभी जगह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार खेल सुविधाएं विकसित हो इसके लिए कोटा शहर में चारों इलाकों में खेल सुविधाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जहां सिंथेटिक ट्रैक वो बच्चा आज भी राजस्थान के अलग अलग राज्यों से यहां पर आता है और 400 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक में वो एथलीट की तैयारी करता है, लेकिन यहां बड़ी संख्या के अंदर लोग घूमने भी आते हैं और इसलिए उनके लिए भी एथलेटिक का एक रास्ता बने और इसलिए 900 मीटर का ये वॉक वे भी उनके लिए बना है।
1: श्री बिरला श्याम सभागार में प्राकृतिक खेती माते वीर राज्य थर्री कार्यशाला में भाषण करियो। वना काश्तकारों प्राकृतिक और जैविक खेती ने अपनावण और नवाचार करने की अरज करी। राज्यसभा 8 नुआ चुनी जा सदस्य आज नई दिल्ली में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन संसद भवन में आने शपथ दिराई। आ सदस्य में कर्नाटक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भेड़ा है। राजस्थान डॉक्टर अलका सिंह ही आज शपथ ली। ई मौके केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, ठावा कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी मौजूद रिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आज त्रिभाषा नीति माथे दिशा निर्देश काढ़िया। बोर्ड कहो के कक्षा दसवीं रा अबारा बेस ने नवी भाषा नीति री पालना नहीं करनी वेला। बोर्ड ओई कहो के सातवीं आठवीं और नवी कक्षा माए पढ़ रिया पढ़ेसरा ने ही दसवीं कक्षा माए पुगण माथे तीजी भाषा माए बोर्ड परीक्षा देवन री जरूरत नहीं वेला। बोर्ड कहो के वाने एक बत्ती भारतीय मातृभाषा माए पढ़ाई करता आपरी विदेशी भाषा ने चालती राखण री मंजूरी वेला। तीसवा राज्य थर्रो भामाशाह सम्मान जलसो आज जयपुर माए राखीजियो। बिड़ला सभागार में आविया ई जलसा में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा जगत रा 276 दानदातावा ए प्रेरका रो सम्मान करियो। जलसा में बोलता श्री बिड़ला दानदातावा री सराहना करता कहो के ओ समाज रे प्रति उत्तरदायित्व और सेवा रो प्रतीक है। इणु हजारों पड़ेसरा रा सपना पूरा करण में मदद मिले है। केंद्र सरकार देश में स्वास्थ्य प्रणाली ने घनी मजबूत करी है, इस आरू करड़ी कोशिश करी जी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कहो के सरकार पहला दूजा और तीजा थरी स्वास्थ्य सेवाओं रो पसारो करियो है। श्री नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद रा सम्मेलन में बोल रहा है। वना कहो के रहवासियां और स्वास्थ्य प्रणाली रे बीचे मेलू पहला बिंदु रा रूप में 186,000 आयुष्मान आरोग्य मिंदर तर्पित करी जा है। सरकार चोखा इलासारू प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाओं रे बीचे तालमेल मजबूत करियो है। देश भर में 23 नुआ एम्स और खास तौरू कम सुविधा वाला और पिछड़ा जिला में 157 बत्ती मेडिकल कॉलेजा की स्थापना रे साथ ही तीजा थर्री स्वास्थ्य सेवाओं ने मजबूत करिया है। जयपुर रा आमेर हल्का में एक दीवार ढेजावणु 3 मजूरा री मौत वेगी ए 3 लोग घायल विया। घायला ने एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराई जा है। हादसो आज दोपहरा ताला मोड़ कने एक होटल में विया एसटीपी प्लांट री दीवार पड़ जावणु वियो। सूचना मिलता ही पुलिस और प्रशासन कानियो राहत और बचाव रा काम शुरू करी जा। जिला प्रभारी मंत्री जोकाराम पटेल और जिला कलेक्टर संदेश नायक मौका रो मुआयनो करियो। मीडिया साथे बदल में श्री पटेल हादसा ने दुखदायी बतावता कहो कि इनरी विगतवार जांच करार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करी जाएला।
2: कौन इसका जिम्मेवार है, किस हद तक जिम्मेवार है, वो जांच का विषय है और किस आदमी की वजह से, किस अथॉरिटी की वजह से दुर्घटना घटित की, इसमें लापरवाही किसकी है, इसकी हमारी जिला प्रशासन की ओर से इसमें इंक्वायरी भी बैठाई गई है। जैसी भी जरूरत पड़ेगी पीड़ित परिवार की सहायता हो, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी और ये भी हम प्रयास करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं घटित नहीं हो।
1: राज्यपाल हरिभाव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा आमेर हल्का में दीवार ढेजावणु हुआ हादसा रे माथे गहरो शोक जतायो है। और अब मौसम, राज्य में दिखनाद आथोणी मानसून आवण सारू परिस्थितियां बरोबर है। फिर वही मानसून रे आवण में भी देरियों घनकरा हल्का में उमस रो असर बनोड़ो है। कुछ हिस्सा में मानसून पेलेरी गतिविधियां बनोड़ी है। मौसम महकमा मुजब अगुणी राजस्थान में मानसून

0: गतिविधियां दिखणा हल्कारे मुकाबले 32 सक्रिय वह सके है। आज तक कुछ दिन माए न्यारा न्यारा हल्का माए गरज चमक और तेज बायरा रे साथे हल्क्यू मजला दर्जारी बरसात रो दौर चाल सके है। दिखणा अगुणी और अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए 2 जुलाई बिरखरी गतिविधियां माए बढ़ोतरी होवर और 2-5 जुलाई रे बीचे अगुणी राजस्थान रा कुछ हल्का माए बिरखरी गतिविधियां माए बढ़ोतरी री आस है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रा निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा बतायो कि ई दौरान कोटा और उदयपुर संभाग माए कठे कठे भारी बिरखा वह सके है।
1: दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अगले 4-5 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में मानसून पूर्व की गतिविधियां जारी रहेंगी। कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ इलाकों में तेज मेघ गर्जन के साथ तेज हवाओं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में अगले 2-3 दिन अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। तापमान भी 42 से 44 डिग्री सेल्सियस बीच होगा। हालांकि 30 जून और 1 जुलाई से उत्तर पश्चिमी राजस्थान यानी बीकानेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो सकती है।
0: देश भर में आज संत कबीरदास की जयंती मनाई जावे। वे भक्ति कालरा महान संत और कवि हा, वना जीवन भर सामाजिक बुराइयां अंधविश्वास और आडंबर के खिलाफ आवाज उठाई। वहां दुआ आज ही सही जीवन जीवन रो मार्ग दिखावे है। कबीर जयंती के मौके आज पाली माए शोभा यात्रा निकाली जी। नया बे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन दे रहो। यमुना जल बंटवारा ने लेर नई दिल्ली माए राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच MOAVO ई ऐतिहासिक जल समझौता 3 दशक पुरानी समस्या रो निपटारो वेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली माए वीरता पुरस्कार दिया। CBSE 10वीं कक्षा रा चालता बैच ने त्रिभाषा नीतियों छूट दी और दिखनाद आथोनी मानसून रे प्रदेश माए आवन सारू परिस्थितियां अनुकूल जुलाई रा पहला हफ्ता माए पुगन रा आसार। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

FM 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। शाम के ठीक 7 बज रहे हैं। अब किसान भाइयों का कार्यक्रम होगा खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने सगला भाया और बया ने रणवीर भाई रखने मानसून राम राम और मारे हाथे आज आया है मकबूल भाई, तो मकबूल भाई आपने भी राम राम।
1: रणवीर भाई आपने और चौपाल सुनिया से किसान भाया ने टाबरा ने माँ बिना ने गणा हेतु राम राम।
0: वासा चौपाल मत आया पर हमके देख हाँ मकबूल भाई के कई भया तो देखो खेती है जो पहले बिरखा हुई जन कर ली है, कई तो देखो पहले रोहिणिया में कर ली, कई पता मिर्गा में कर ली, हमें आद्राम में और खेती करी, पर कई थोड़ा है जो इंद्र भगवान अजय है जो मेहरबान कोई अंत भाई लोग उड़ी के।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, देखो उड़ी कर अखबार से देख रहे हो कि अभी अखबार का भी समाचार आई है कि अब 4-5 दिन तक तापमान और बढ़ी।
0: भाई रुत में एक मेरा मानना है कि दिखना दो आथोनो जो को और मानसून रो बन रही हो नी इस है जो को मानसून री बिरखा आउन ने उम्मीद जागी है कि भाई जुलाई रे इन महीनों जो को लागे इन पहले सप्ताह मान है कि थोड़ा बिरखा हो जाए एर बी पूर्व री जकी बिरखा है बात तो कटी कटी हुई है, उम्मीद एडी करा कि भाई जके बयान खेती नहीं हुई माने भी खेती है जो को बेगी हो जाए।
1: देखो सब पहली तैयारी रख लेनी चाहिए कि आप ने कहीं कहीं करना है क्योंकि अब बिरखा का समय आ गया, इंद्रदेव कद भी आप पर मेहरबान हो सके, तो ई वास्ते आपने चाहिए भी खेत की साफ सफाई कर ले, वहाँ खरपतवार वगैरह जो भी है निन्या निन्या सेंक कर करूर साफ सफाई पूरी रख ले।
0: भाई जगह बयान टेम मत खेती पहले बिरखा भी होगी और खेती करी वह तो देखो चाहे बाजरिया की बात करा चाहे मूंगा की बात करा चाहे है जो मोट जगह आगत बया आगे थी में वहां ने है जो निन्यान आयोड़ा धान है और कैबत में ही कहवे के बार का ही अंशियो और कद दे कश्यो। खरपतवार जटता है मकबूल भाई बात आवे के हादसू कस्यू अगर भाई मेहनत कर खरपतवार निकाले निनान करे तो विरी होड़ नहीं वे।
1: बिल्कुल
0: जो भी बडवार की फसलानी है जो वायु संचार कैदा या पानी रो जो पूरा मिलना है वो है जो निनान करिए खरपतवार निकाले वे। आजकल भाई देखा देख एक विधि अपना लग गया कि भाई कस्यू कौन निनान करे आप तो एड़ी है जो रासायनिक दवा लाओ अंग्रेजी दवा लार छिड़काव करना जके है जो खरपतवार नष्ट हो जावे। नष्ट तो खरपतवार हो जावे पर कई बार एडी
1: फसल भी हो
0: जावे भाई कई फसल एडी है जका माते असर करे और जमीन माथे तो बीरो असर पूरो हुए कि जमीन भी जहरीली हो जावे। भाई सिर्फ आलस हो है कि पयम है जो आप रासायनिक अंग्रेजी दवा छिड़क दी ये आलस तो इतो ही है और जे आप देखो 5 रुपया लगार भी है जो मजदूर लगार भी खरपतवार कस्यू निकला वहां तो वीरी है जो गुणवत्ता और वह होड़ को वह नहीं जो खरपतवार निकाली वो जो फसल जकी उबी है वह है जो घनी जोरदार हुए।
1: देखो बात एड़ी है कि जहाँ आप कोई भाया के ट्यूबवेल है बट ट्यूबवेल है तो पहली कहीं करता ट्यूबवेल पाइप लेर और खेत में छोड़ देता तो चारों तरफ पानी बीरो बेवतो तो जगह जगह खरपतवार फसल के सतह से खूब हो जाती, लेकिन अब कहीं है लोग समझन लागा तो अब कहीं करे कि बूंद बूंद सिंचाई है ना बिन अपनाउन लागे
0: और पानी भी दिनों दिन कमती हो रही हो भाई लोगों का कहना है कि हर साल पानी है जो को ट्यूबेलारो कुआरो नीचे उतर रही हो स्तर है जो नीचे जा रही हो यानी कि पानी की कमी आ रही और इन्हीं कमी ने देखा तो आने वाले साल माने एक दिन पानी है जो खेती लायक हो तो रह भी कौन तो कम पड़ती।
1: बिल्कुल बिल्कुल ये वास्ते ही आप जो बूंद बूंद सिंचाई है बीनू अगर आप सिंचाई करा एक तो आप सब मोटो फायदो कहीं है कि खरपतवार को नहीं हुआ और दूसरा फायदो कहीं है 50-70% तक पानी की बचत हुआ
0: इतो देखो पानी भी बचे हुए तो पानी री तो बचत करनी घनी जरूरी फिर फायदा ही फायदा बूंद बूंद सिंचाई में और पानी है जो को जो टपक सिंचाई भी इन्हें कहे भाई लोग बूंद बूंद सिंचाई ने तो पानी भी टपक टपक कर पौधे री जड़ा रखने जाए नहीं जन वो है जो को फालतू को जावे।
1: बिल्कुल बिल्कुल आई तो बात है ना कि सीधा जड़ा तक पहुंचे और भी अपने घनो फायदो और फसल री पैदावार में बढ़ोतरी हुए और फल सब्जी आज जो फसल हुआ भी में 20-50% तक बढ़ोतरी हुआ
0: फायदा। उत्पादकता की बात करा गुणवत्ता की बात करा तो टपक सिंचाई में पेड़ पौधा ने रोजीना जरूरी मात्रा में पानी मिल जावे यानी कि ने बतौर ने कमती ये वास्ते बामाते तनाव भी को पड़े नहीं और फसलों की बढ़ोतरी भी चौकी वे और पैदावार भी चौकी वे दोनों में बढ़ोतरी वे ए है जो को फायदा है।
1: बिल्कुल और कम लागत के अंदर अधिक अपन है मुनाफा हुए और साथ ही साथ मिट्टी का कटाव भी कम हो जावे और लवणीय और उबड़ खाबड़ जमीन हुआ ना बट भी समान सिंचाई आप कर सका।
0: भाई जट लवण वाली जमीन है बटे भी हो जाए सिंचाई बराबर है ऊंची नीची जगह है कटी द्वारा धरती है कटी नीची है कटी ऊंची है तो वटे भी इन है जो बूंद बूंद सिंचाई सो सिंचाई हो सके है और फालतू पानी बिल्कुल को जावे
1: बिल्कुल। देखो अपन पानी नहीं बचाना मेन तो पानी के साथ साथ अपन की देखो बूंद बूंद सिंचाई का ही फायदा है एक तो अपन की मजदूरी बचे दूसरो खरपतवार नियंत्रण रहे बिरे साथ साथ आप बूंद बूंद सिंचाई क्यों आप रसायनिक कोई अपा वो डाल नहीं हुए दवाई तो बब भी डाल सका जो जड़ तक पहुंच जाए
0: बराबर मात्रा रमान है जो को देश का हाँ और सीधी पौधा नहीं है जो को जड़ा
1: जड़ा
0: तक बिंडसु
1: पुगा सका हाँ
0: जीडी पे जाऊं पौधो है जो को पोषक तत्व है पूरा है जो को ले ही और प्रयोग करियोड़ा जो का उर्वरक है बामे होने वाला नुकसान है जो को बेकम हुई पैदावार में बढ़ोतरी हुई और इन पद्धतियों 30-45% तक रासायनिक खाद की बचत भी करी जा सके।
1: ओ हो वह तो फायदो घणो और ऊर्जा की बचत कम दबाव पर काम करे जीव कहीं है बिजली की खपत भी घटिया करे और वाष्पीकरण कमी निराई गुड़ाई और खुदाई वो कटाई में भी आसानी हो जाएगा अपन ने और दीमक नियंत्रण होया करे।
0: कई तरह का फायदा टपक सिंचाई में पानी सीधा फसलों की जड़ में दिरी जाए जो क्यों कहें कि आगती पागती री जमीन हुकी रहनू जो को फालतू खरपतवार वह नहीं वो है जो को बदे को नहीं इनू जमीन रा जो का हगलाई पौष्टिक तत्व है वह सिर्फ और सिर्फ फसल ने ही मिले।
1: पत्तियां सूखी रही करे जीव कहीं है पंगल रोगों का भी खतरों कम हो
0: रोग भी कम लागे
1: बिल्कुल और सत्य सत्य हाथों पानी देवनू जरूरत नहीं पड़े अपा हाथ पानी देवा बिरी जरूरत कौन पड़े भाई टपक टपक टिपको पड़ता रहे और सीधी पौधा की जड़ा तक बंचे और बच्चों पानी रा सदुपयोग आपा अन्य उत्पादन ले भी कर सका
0: भाई दूजी ठोड़ है जो आपा काम में ले सका तो इन तरह से अपना पानी भी बची और अपनी फसल भी निरोगी हुई अपनी है जो जमीन भी सही रही और मेहनत रार घना ही फायदा है तो भाई है जो इन विधि ने अपनावे जन देखो थोड़े पानी रिमाने ज्यादा पैदावार ले सके
1: बिल्कुल
0: ज्यादा दूर रमाने फसल लेनी है जमीन माते तो पानी थोड़ो तो भी है जो फसल बती ले सके
1: बिल्कुल आज तो घनो फायदो पानी री बचत कर सका साथे साथे खरपतवार नियंत्रण कर सका बिरे साथे साथे समय की बचत हुए मजदूरी कम लागे पैसा खर्च कम हुए तो अपन से फायदो ही फायदो है
0: और इन वास्ते भाई है जो कई तरीका भी अपना सके जहाँ देखो चौमास रमान बिरखा हुए इंद्र भगवान मेहरवान वजन कई बार घनी बिरखा हुए तो उन टाइम में भाई जकी जगह ढलान है उन टाइम में पानी इकट्ठो कर सके भाई ए पानी रो टांको भी बना सके या पचे डिगी टाइप बना सके जटे प्लास्टिक रो मेणियों मजबूत लगा परो और बिरे माने ढलान में एक जगह मकबूल भाई हूँ एक गाँव में गियो जो देखिया जो एक धोरे माथ पेड़ लगी उड़ा
1: धोरे माथ
0: और नीचे ढलान माने एक मोटी डिग्गी बनी उड़ी धोरे माथे ऐडा पेड़ लगी उड़ा के भी पेड़ ने बारे बारे है जो पत्थर जड़ी उड़ा रेत रे ऊपर पत्थर लगा उड़ा पीछे बारे थोड़ा थोड़ा खाडा छोड़ी उड़ा जट है जो पानी टपक सिंचाई में जावे और नीचे है जो समतल जगह माने एक ऐसी पानी री डिग्गी बनाई उड़ी जटे बरसात रो धोरे रो पानी बैर भी डिगिर मान आवे जटे मतलब रेतरो धोरो हो उन पानी ने काम लेर वो पानी डिगिर मां आवे और पच्चे साल भर भाई है जो को बटे तरह तरह रा रूंखड़ा लगायोड़ा कई बाग बगीचा रा कई दूजा रूंखड़ा जन मैं अचुम करियो कि धोरे माते रूंखड़ा ही लगा लिया और धोरे माते पानी भेड़ो कर रहे जो को साल भर सिंचाई कर ली एड़ो है जो को अनूठो प्रयोग
1: फायदो बाकी डिगी बना ली ढलान क्या दे और डिगी बनाने का अभी पानी अब आप कोई फसल ले रहे हैं मान लो और इंद्रदेव मेहरबान नहीं हो रहा अगर आप पानी स्टॉक है तो आप बी टाइम सिंचाई कर सका
0: बी टाइम कर सका और पूरे साल भर जद भी अपनी फसल ने या पौधा ने जरूरत पड़े पानी की और एक भी डिगी माते ऐसी एक जाली भी लागी उड़ी जकर मान कहीं के वे पेड़ है ना आगती पागती तो पेड़ रहा पत्ता और जड़ रहा वे भी जाली रे ऊपर ही रह जावे पानी में नहीं जावे जके वो पानी भी खराब को बने
1: बिल्कुल बिल्कुल बात तो ताकि
0: तो ऐडी विधि अपना भी भाई है जो
1: पानी बचा सके खरपतवार भी बचा सके और साथ साथ क्या करना कि कम पानी वाला क्षेत्र जो है करना बट भी उद्यानी की विकास संभव है
0: बिल्कुल
1: और साथ साथ कहीं एक या दो फसल में लागत पच वसूली हो जाओ, पच फायदो ही फायदो, एक दो फसल के अंदर पे वसूल हो जाओ पाएंगे जो लगाओ ना टपक सिंचाई ने बीरी पद्धति पया जो एक दो फसल लेमा बीमा वसूल पच अपन कहीं फायदो ही फायदो, नुकसान नाम ही नहीं है। तो किसान
0: भाई देखो के अपने सरकार भी अपना जो कृषि वैज्ञानिक है वे भी आ कहवे है कि भाई आने वाले टाइम में जे अपने हरियाली देखनी है तो पानी बचाना साधन जका है वे काम में लेना पड़ी और वे विद्या काम में किसान भाई ले ही जनी लंबे टाइम तक खेती कर सके।
1: बिल्कुल बिल्कुल सा तो वाह किसान भाई आ चीज रो ध्यान रखी जो बूंद बूंद सिंचाई योजना या टपक विधि जो कहवा आप बिना आप अपनाओ ताकि अपने ज्यादा ज्यादा फायदो हो सके।
0: बिल्कुल हो सके हमें फायदो मकबूल भाई आपने जने हुई के चौपाल सु किसान भाई हताया है जकी टेमो टेम रोजी ना पाची भाया ताई पुगे और गांव गौंतरा वे तो कहीं हमके कोई गौंतरो करियो।
1: हाँ ये गौंतरो करियो मैं गयो मुंडू मुंडू थोड़े आगे और निकलियो ना तो बटे सोलिया ना एक गांव की कंकड़ी बट गयो तो बट देखियो तो काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र के अंदर एक भाई बैठो तो बीरे कई तरह का जानवर भी है खेती भी कर रहा है और तरह तरह का कबूत क्या करे बत्तख ही ने कहीं और भी कई हो
0: भाई,
1: तो भाई भाई भाई मजार बेड गोबिंग मारन लागे
0: किसान भाई खेती सागे सागे दूजा काम
1: पशुपालन। हाँ
0: पशुपालन का भाई मिलिया।
1: हाँ बो भाई मिलियो माने और बीरो नाम हो अशरफ तो बीह मैं तय करी तो भाई तक करा पूर्ति
0: करा तो लो हूण
1: भाई समय समय पर कोई ना कोई जानकार बातचीत क्या करा। आज मैं घूमता घुमाता पहुंचा मुंडवा थोड़ा और आगे निकलिया तो भाई सोलियाना कांकर के अंदर देखा तो बटे काफी लंबा चौड़ा

0: का खेत है, खेत में कुछ भाई बैठा है, बैंक करा है। नमस्कार साहब।
1: नमस्कार साहब।
0: क्या था कई नाम आपरो?
1: मारो नाम अशरफ है।
0: अशरफ जी।
1: जी
0: अच्छा अच्छा, तो किस कंकड़ है?
1: अपने सोलियाना कंकड़ है।
0: सोलियाना कंकड़ है, तो सेंग सुख सुविधा बिजली पानी सेंग?
1: हाँ, बिजली अब नहीं लगे यहाँ बिल्कुल, खंबा पोल रोपोड़ा है, आ जाए धीरे धीरे।
0: अच्छा,
1: और बाकी पानी आने की व्यवस्था खूब है, कोई दिक्कत को नहीं।
0: कोई दिक्कत को नहीं।
1: हाँ।
0: तो अठे कोई जगह की कोई पहचान है?
1: जगह की पहचान आई है कि भाई टपांग खेती बाड़ी अच्छी हुए, मेथी वगैरह अगर बावन और रहे तो मूंग मोट जमारा पा, तो साल में एक फसल ही लिया अगर आज की बारिश की बरसात की मौसम की फसल लेवा, वहाँ फसल के साथ साथ अपांग दूसरों भी काम है जिसको साइड के मायने पशुपालन करे अगर आप।
0: अच्छा, पशुपालन भी करो।
1: हाँ।
0: तो खेती के अंदर अपा कहीं कहीं पहले खेती की बात करा, तो खेत के अंदर जैसे बरसात आवे भी पहली कितना टाइम पहले आप तैयारी कर लो?
1: बरसात आऊ करीब एक 15 दिन 10 दिन पहली मान चालो आपके भी अपन खेत ने रेडी कर लेवा, काई कमी है बिग मायने कमी बेसी भी पहली खाद वगैरह बीज वो तो डालनो रही है। और जान के भाई कटी उग चूक है मामलो तो भी ने सेट करो, तो सारो काम करने के बाद में बरसात आवे भी बाद में आप 2-3 दिन वेट करा, फिर दूसरी बरसात आवे के भी नजदीक है बरसात जाना तो आप बावा को नहीं भाई थोड़ा सो गेब रहे हो जना आप बीज बो दे
0: बीज बो दे
1: बीज के
0: मायने।
1: अब मिट्टी लाल मिट्टी है,
0: लाल मिट्टी काली मिट्टी
1: एक मायने ज्यादातर ज्वार है, बाजरो है, मूंग है, गवार की फली है, मोठ है, ये सब फसल माने।
0: असलम भाई ध्यान आप जवार मोट मूंग लाल मिट्टी में है ना?
1: हाँ,
0: तो इमें मान लो मिट्टी है ये अगर कोई ट्यूबवेल वगैरह यहाँ खुदवाओ तो सक्सेस है की?
1: बिल्कुल सक्सेस है।
0: अच्छा अच्छा, तो अरे है ट्यूबवेल वगैरह
1: है?
0: काफी है ना
1: नजदीक में।
0: अपाएं कोनी
1: अपन खुद के है कोनी, क्यों आप साल में एक बार लेवा
0: एक फसल
1: बारिश की फसल तो अपने इतनी जरूरत है कोनी, बाकी काम है जी को पशुपालन चले।
0: पशुपालन कितना बकरा बकरी है?
1: बकरा बकरी करीब आप 50-60 एनी टाइम अवेलेबल रहे आप ने
0: 50-60 एनी टाइम
1: बच्चा
0: ये बरबरा ये हिरण जान का कल नस्ल
1: इरमाइन जान आप 4-5 प्रकार की नस्ल है जान, बीटल है पंजाबी, बरबरी है, अजमेरी है और सिरोही सोजत की भी है, बाकी अब विचार है कि भाई आप हैदराबादी लवा हैदराबादी लार कोई ब्रीड अच्छी निकल जावे तो जिका भाई ने अगर पाल नहीं रहे तो ब्रीड अच्छी पालना तो इनकम भी अच्छी है, फिर मायने किसान खेती के साथ साथ वो भी काम कर सके।
0: सही बात है। तो जान खेत के अंदर अगर बीज की बात करा, बीज घर का लो या बाजार लो?
1: ना अपन को परंपरा घर को ही बीज चले, हर बार अगली खेती ले लें अभी खेती हूँ अगली बार वो बीज अपन
0: बीज काम में लो। तो एक साल रुकवा ली क्या करो?
1: बीज ने बढ़िया सेफ्टी हूँ राख देवा कपूर वगैरह कुछ मतलब
0: दवा
1: वगैरह सब बेस्ट है कि भाई गोबर की बानी है फिर मायने राख देवा तो गुण वगैरह जगह कीड़ा वगैरह पड़े को नहीं।
0: और पर खाद किस काम में लो?
1: खाद मींगनी बकरी
0: की बकरा ही था
1: ज्यादातर आप बकरा की
0: बकरा बकरी
1: सब बेस्ट। हाँ सब बेस्ट ओरिजिनल बकरा मींगनी काम आवे, बाकी और खाद गोबर वगैरह की भी डालो और दूसरो खाद अपन जरूरत है कोनी जी को वो केमिकल को बनो रहे केमिकल डालो आप देवा को।
0: तो इनमें कोई नस्ला वगैरह भी होगी कहीं नाम है अपने ये बीज बीज जो है ना बीमा कोई किस्म भी होगी?
1: बीमे कई प्रकार का बीज आए अगर अलग अलग तरीका का आवे, बाकी अपन
0: बढ़िया क्वालिटी का रखो
1: अपन जो घर को बीज चले ना
0: बढ़िया क्वालिटी छांट लाइट हो।
1: हाँ
0: सही बात है। तो इनमें भी कोई हरी बीमारी आवे?
1: हरी बीमारी में कीड़ो वगैरह लाग जावे अगर फसल को आप टाइम पर ध्यान नहीं रखे तो
0: कीड़ो
1: बारिश करी ऊंची नीची हो जावे जना एक मायने छिटकाव हुआ स्प्रे को छिटकाव वगैरह कर देवे दवाई को केमिकल को जना वो कीड़ो खत्म हो जाए।
0: असर भाई मैं कहना चाह रहा जान आप कोई कीड़ा वगैरह लाग गया छिड़काव करो तो कोई छिड़काव करो तो कोई जानकार पूछो दवा
1: ना डॉक्टर की सलाह तो रही है आजकल देखो ऑनलाइन सगड़ो काम है ऑनलाइन के मायने जान
0: कृषि
1: मायने चेक कर लेवा क्यों फायदो हो जना कर लेवा काम बाकी हर बार दूसरी दूसरी दवाई अजमाता रहे
0: अजमाता
1: जिकी लाभ होवे भी हूँ काम चल जावे।
0: सही बात है। आप रही देखो घर का बीज पर खोड़ा हुआ है और मींगणिया जो गोबर मींग गोबर की खाद हुआ मींगणिया की गोबर की तो बात एक बहुत बढ़िया खाद हुआ बीमा खेत बनोड़ो रहे
1: बनोड़ो रहे
0: है कोनी तो ये तो बढ़िया बात है। देखो एक चीज और है ध्यान आप चाहो तो ट्यूबवेल बनवा सको क्योंकि ट्यूबवेल में भी की अनुदान वगैरह मिलते ही तो होला आपको जानकारी करी होला
1: बिल्कुल मन एक बारे में थोड़ी जानकारी और नॉलेज कम है बाकी मिले काफी जना किया करे लेकिन आप भटका करा बाकी कई जगह फेल भी हुआ कागज वगैरह भी हिसाब जना जानकारी
0: हर गुरुवार के दिन जुम्मेरात को एक जो फोनिंग प्रोग्राम हुआ बीमा विशेषज्ञ ने बोला हुआ अगर कोई चीज पूछना चाहो आप या खेत के बारे में कोई पूछना चाहो तो आप फोन करो 015-82-240-168।
1: अच्छा
0: ये नंबर पर आप फोन करो तो आपने कोई भी चीज की समस्या आप पूरे समाधान करा
1: बिल पूछा
0: कोई मान लो आपकी खेती तैयार होगी कितने टाइम में तैयार हो जाए।

0: ये पूरी कंप्लीट और
1: करीब 3 महीना और कुछ दिन रिया कर, बाकी 4 महीना आप मान चलो,
0: मान चलो
1: कच्चा पका।
0: तो ये जो यहाँ आप खेती तैयार हो गई,
1: हाँ।
0: तो भी समय आप थ्रेसर काम में लेवा,
1: घंटापुर चले।
0: और कोई नवा चार यानी खेती के अंदर कोई नई हो चीजा का उपयोग करा लोग कई जो न करे, तो कई नई मशीन बना हुआ है, कोई ज्ञान स्प्रे छिड़कन की मोटरसाइकिल हूँ, कोई नई मशीन बना ले, कोई नवाचार देखे हो आपने कोई?
1: आज को समय यान को है, टेक्नोलॉजी को समय आएगी, काफी मशीन आएगी, नई नई कई मशीन फेल हो जावे, कई मशीन पास हो जावे। तो अपने तो वो ट्रैक्टर वाले सिस्टम है ज्यादातर बोवा, तो हल बीज बोवा, और पहली वाला समय गया क्यों, पहली वाली मतलब री को नहीं
0: कोई,
1: और चले वो अभी हिसाब जान ट्रैक्टर चल रहे बार वो ही काम ज्यादातर
0: मशीनरी युग है। हाँ बात सही आप रही। तो अब अच्छा एक बात आप करा अशरफ भाई, जाने अब बकरा बकरिया दी था, क्या बकरा बकरी है, मैं देख लियो खूब सारा बकरा बकरी है, अलग अलग नस्ल का, बड़ा सुंदर बच्चा, ये पतली गर्दन को लंबा जानवर है, लंबी गर्दन का, किसी नस्ल है?
1: अजमेरी गमाइन है,
0: नई नस्ल देगी मत इन एकदम अलग ही, मेरी तो गर्दन ही अलग टाइप ही है,
1: किसी
0: भाई पतली गर्दन वाला बात जो जाने एक बच्चों देखो,
1: बस सोजत की बुलेट लाइन है,
0: सोजत
1: व्हाइट पंजाबी की भी है अपन, और दूसरा जो बा बड़ी वाली थे बता रहे हो ना, बा बकरी है पंजाबी,
0: पंजाबी
1: पंजाबी ओरिजिनल भी की लंबी गर्दन रिया करे, कद काटी लंबी रहे, दूध में भी अच्छी रहे, बच्चा 2 या 3 लाया करे,
0: अच्छा
1: उत्पादन अच्छा होएगा,
0: उत्पादन अच्छा होएगा, बढ़िया बात है। देखो
1: तो बरबरी है जी की अपंग एरिया में जान नागौर जिला के मायने इतनी फेमस कोनी, बाकी मैं बयान सलाह देनी चाहूँ की बरबरी राखो साल के मायने 3 बार बया करे, 13-14 महीना में 3 बार
0: बच्चा
1: दे, 2-3 बच्चा लाया करे, एको बच्चों भी अच्छो शोक वास्ते लोग ले जावे, छोटी साइज रहे, तो एक बच्चों रेट में भी अच्छो बिके,
0: अच्छा तो
1: बढ़िया चीज है, बढ़िया चीज जान अपन 5 है, तो 5 का जान पिछली बार आप 12 बच्चा सेल कर दिया 5 बकरियों का,
0: अच्छा
1: हाँ, तो अब वे 5 बकरियां जी की परमानेंट फार्म आती है, फिर गया बन हो रही है ब्याह वाली बकरी,
0: छोटा बच्चे बिक जाओ बढ़िया कीमत,
1: मतलब करीब करीब 2.5-3 महीना वो बच्चो 6-6.5 हजार में आराम बिक जाओ,
0: बहुत बढ़िया। तो अशरफ भाई तो बढ़िया आपने धंधा शुरू करिया, खेती भी करो, खेती तो आप सिर्फ बरसात ही करो, मेरे बात है फार्म चलो, ये फार्म के अंदर अलग अलग नस्ल की जानवर हैं, आप किसानों ने कहीं कहना चाहोगे भाई बकरा बकरी पालन या इनकी नस्ल या इनका धंधो करना चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल करना चाहिए जान, खेती बाड़ी आप कर ही रहे, 4-5 नग रखो, ज्यादा की सलाह आप देवा को नहीं के ज्यादा नहीं, तो 4-5 बकरी रखो, आपको साइड खर्चो निकाली,
0: साइड खर्चो निकल जाओ बिल्कुल, और ये मुर्गा मुर्गी भी रखो है ना?
1: मुर्गा मुर्गी भी रखा, मुर्गा के मायने भी अपन 6-7 प्रकार का मुर्गा मुर्गी है, बीर मायने जान असील है जी का, पुराना टाइम के मायने लोग युग बीत युग राजा महाराजा गढ़ का गढ़ हार जीत के मायने काम ले होता जान, फाइटर लड़ना मुर्गा है, बे मुर्गा है, और बाकी कड़कनाथ भी है, देसी भी है, अपा जी का नोकल बोले देसी बे भी है, और नूरी भी है, और सुमाली आया अगर एक नस्ल जी की अंडा उत्पादन कर
0: अंडा खूब
1: भी है अपन,
0: अच्छा अच्छा एवं की फायदा अपन है,
1: एवं फायदा वो है कि एक तो खेत के मायने है, फिर इनकी बींट है जी की खाद के प्रति बहुत बढ़िया काम करे, ए पूरा खेत में फिरता रहे, घूमता रहे, दानो पानी घास फूस खाई ले आराम हुए, देसी पर चीजों पन पे इंक पर्सनल धान आप कोई ध्यान को नहीं जी, वो बाजरो उछाल दे खेत के मायने वो खा ले, एक तो फायदा होगी, और पचे का अंडा है जी को देसी दवाई रूपी काफी लोग काम लिया अगर इनको भी अंडो बिकतो रहे अपन ने, और सर्दी सर्दी में तो बहुत बढ़िया बिके, गर्मी के मायने पाचा ए अंडा कोई बच्चो बना ले पाची पैदा ही जावे,
0: तो मतलब डबल फायदा है। अब बतका भी दिख रही है माने तो 2-4-5 कितनी गए?
1: देखो 4-3 बतक है, मायनो पहली 2 ही लाई और बीक बाद में बच्चा पैदा होया है ना, और की बच्चा तो देखो मौसम के अनुसार बीमारी वगैरह आती रहे, मैं भी जानवर
0: कम हो जाए
1: तो बच्चा 3-4 खत्म हो गया, अब बत्तक है जी को इको भी अंडो बहुत बढ़िया यूज में आया करे, सांस के वास्ते
0: सांस की बीमारी
1: के वास्ते बच्चा अंडो काम आया करे, तो इका भी अंडा अपा 3 महीने में मोल बिक जावे, अच्छी रेट में बिक जावे, नहीं बिके तो आप बच्चा बनवा ले, बत्तक है जी वो छोटो खाडो थे में बना उड़ेगा तीर बोर है फार्म पर, फिर तो अच्छी लगा व्हाइट फुल हाइट की बत्तख,
0: पूरी व्हाइट लंबी डीकी खूब है,
1: ऊंची लंबी डीकी बर्गर, अंसा नस्ल की बत्तख है,
0: अंसा नस्ल की,
1: हाँ
0: इनमें भी नस्ला हुआ है ना,
1: हाँ सेक्रेटरी वास्ते डॉग भी रखोड़ा अपन जर्मन सपट,
0: इनकी सेफ्टी वास्ते
1: सेफ्टी वास्ते
0: पूरा पिंजरा में बंद है कुत्तों डर लग गया मन दूर हूँ देखते
1: ही। एक तो नाइट की पाजे तो आज तरह दिन में बंद रखा पा के भाई कोई भाई सेना आवे तो
0: रात खोल दो
1: रात कमाए ने खुला रहे जी को पूरी सेक्रेटरी एंकी है मतलब फार्म कमाते जीती भी है ना पा खेती में घूमता रहे
0: कोई चार कुत्ता
1: कोई दूजो जंगली जानवर है या कोई दूजा कुत्ता है बिल्लिया है लारला जानवर की हिफाजत है कुत्ते ही खरिया
0: तो
1: पहली आवाज दो लिखोड़ो भी है कि भाई थोड़ा वो तो कुत्ता हूँ थोड़ा
0: सावधान रहो। बिल्कुल बिल्कुल सरब भाई आप बहुत बढ़िया जानकारी दी है खेती के साथ साथ देखो पशुपालन मुर्गी पालन बकरी पालन सगली थे यूं का काम करो
1: बिल्कुल
0: तो बहुत बढ़िया। आप किसानों ने एक आखिरी संदेश का ही देना चाहो
1: संदेश वही है कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो एक सागे सागे वो भी काम चलाओ बेनिफिट हुई आने वाली समय बहुत घातक आ रही है आज की टाइम में महंगाई दिन ब दिन बढ़े क्यों एक बंदा ने दो तीन धंधा तो करना ही पड़ी
0: और
1: एक धंधा तो मजूरी हूँ तो देखो पार पड़े को नहीं। खेती के साथ साथ बकरी पालन है पशुपालन है गाय भैंस वगैरह सब आप रखो और क्योंकि खेती के साथ साथ इको भी काम चाल तो रहे।
0: बिल्कुल साहब मांगे किसान ने जानकारी दी इरवा साहब रो घनो घनो धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
2: हाँ तो मकबूल भाई सोल्याणा रा असर भाई उन जकी हतायाँ करी बे भाया तय पूगती हुई और हमें भाई लोगान उड़ी वेला कोई भजन गीता नहीं अरे हमारे इन दिन हम देखा हाँ तो देखो के गंवारा जका तालाब है नाडी नाडूलिया है बे बिरका हुई जन जिग्ञा जिग्ञा लबा लब भरिया और अपन पहला टाइम में भी इकटी देखो आदरी टाइम में भी घणकड़ी ठोड़ है जो पानी बरसात रो आवे तालाबा में जने पणघट चाले बट पणियारिया है जो पानी रहा घड़ा भर है जो चाले अड़ो इस गीतड़ो भाई ने सुना रहा भोंगर खान और सात्यान गायडो लो सुनो।

डर भरी यार नार दुनिया मारा सैन रे दुनिया मारा सैन भरियो भीम तलाव भरियो भीम तलाव मिथुला गतिर

0: गंवार बिक्यो 5,000 ले ने 5,625 रुपया क्विंटल।
1: ये बात ही तारा मीरा की बात करा तो तारा मीरा आज कम कम बिकिया 5,600 और ऊपरा ऊपरा बिकिया 5,700।
0: जीरे रा भावरिया 17,000 लेने 22,800 रुपया क्विंटल ताई एर दाना मेथी बिकी है 5,700 लेने 6,150 रुपया क्विंटल।
1: ये बात ही इस गोल की बात करा तो इस गोल बिकी बाजार में 9,000 ले 14,000 रुपया प्रति क्विंटल और सौंफ री बोली लगी कम कम 7,000 और ऊपरों ऊपर 13,300 रुपया प्रति क्विंटल।
0: चिनारा भावरिया 5,000 लेने 5,325 रुपया ताई और असाड़ियों बिक्यो 5,800 लेने 6,000 रुपया क्विंटल ताई।
1: सिंधी सुवा री बात करा तो सिंधी सुवा बिक्या आज 6,000 ले 7,500 रुपया प्रति क्विंटल।
0: ए तो हो गया नागौर मंडी रा आज रा भाव जे भाई कोई भाई ने रोकड़ो वेर बेचनो वे तो आप जिन से को ले जा बेच सके एर देखो अपन खेती री पहली बातें करी ही के भाई हाव चेत रहनो और खेतरी पूरी तैयारी राखनी पूरी है जो खेती माते मेहनत करनी एरा मैं अपन हाव चेती राखनी पड़ी मकबूल भाई घड़ी करे इशारो टाइम री हाव चेती
1: समय के बिल्कुल सा समय के साथ अपन ने चालनो है तो अपन के समय जो रियो है पूरो तो आप रा मकबूल भाई
0: और रणवीर भाई ने दिलो से करा राम राम, राम।

श्रोताओं, अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया, जिसने इस कार्यक्रम

0: को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
0: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
0: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
0: इसका उत्तर है साथियों, भीमबेटका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
1: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
0: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
0: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
1: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
1: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है, बुधनी गई है जंगल।
0: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फल कंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ। हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: हाँ। नहीं नहीं नहीं,
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ अम्मा, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं। अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं, मैंने तो सोच लिया है मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: अम्मा अम्मा,
1: अरे अरे क्या हुआ?
2: अरे चुप्पा चुप्पा, क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
2: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
0: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
0: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा माँ मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
2: चुप्पा चुप्पा,
1: सोचा बेटे सोचा, डर मत, अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश राजा बेटा, है ना? चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये?
2: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, बुधवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है।
1: वो
0: चल चुब्बा, वो रस्सी उठा,

0: अरे मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।
3: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
0: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
0: फिर भी
1: अम्मा तू भी चले वापस?
0: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
1: अम्मा क्या सोच रही है?
0: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
0: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
1: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
0: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
0: हाय रे बात तो तुम्हारी सच है।
1: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना उनमें से एक को काट देते हैं।
0: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
0: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
0: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है।
0: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
1: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
0: हाँ हाँ चलो चलो आगे चलकर देखते हैं। चलो
4: देखो ये
0: पेड़ देख लो।
1: अम्मा अम्मा वो देखो ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
0: चलो। इधर से निकल कर आओ।
1: अच्छा
2: ध्यान से बेटा।
0: क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ?

0: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे, है ना?
1: हाँ बेटा, ये देखो, ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़, ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
2: और नुकसान भी क्या है?
1: बहुत नुकसान है। हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
3: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो।
4: ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
1: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
4: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है। उसे तो काटो कम से कम।
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
1: हाँ।
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
1: हाँ बिल्कुल,
4: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बतवा, रहने दे इसको भी।
1: अच्छा।
4: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
1: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।

0: बख्श दिया अब किसे काटें?
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
0: और क्या?
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं। जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
1: अरे चुप्पा। हाँ, पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है,
0: तू समझ गई है?
3: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है। अब तू ही बता किसे काटे।
0: बता?
1: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
1: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
1: चल। बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे। हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
3: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
1: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का।
0: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।

0: है तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारे अगले कार्यक्रम की उद्घोषणा की कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

FM 103.7 MHz पर हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 8 बज रहे हैं श्रोताओं, आइए सुनते हैं सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से, और ये है कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

श्रोताओं, ये गाना है फिल्म प्रेम पुजारी से और इसे गाया है लता मंगेशकर ने, और इस गीत को पसंद किया है वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी, लवली, आरती और इनके सभी साथियों ने।

ये गाना पसंद किया है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसबीर, जस्सी, सीता और गीता ने। ये सुनना चाह रहे हैं चिराग फिल्म का ये गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम में आगे सुनिए फिल्म फकीरा का ये गाना, जिसे पसंद किया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और इनके साथियों ने, बागपत उत्तर प्रदेश से।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल से, जो कि होता है सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म आशिकी का ये गाना, जिसे गाया है कुमार सानू ने, और इस गीत की फरमाइश की है देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर ने, डांडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से। तो आइए इनकी फरमाइश पे सुनते हैं ये गाना।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे सुनते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा की फरमाइश पे जंजीर फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

श्रोताओं लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म प्रेम रोग का ये गाना। इस गाने को पसंद किया है संदीप सिंह सोनगरा ने, प्राची सोनगरा, सोनल, कार्तिक सोनगरा और पूरा इनका सोनगरा परिवार, जिला चूरू राजस्थान से।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम दिल से। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। और आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं झलकी स्कूल।

0: जो पता है यार
1: तो लो एक मिनट सुनो, अब मैं एक और चुटकुला सुनाती हूँ। एक बार की बात है, क्लास में मैडम स्टूडेंट से पूछती है कि बताओ सच और वहम में क्या अंतर होता है। तो स्टूडेंट बोलती है, मैम सच तो ये है कि आप हमें पढ़ा रही हो और वहम ये है कि आपको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं।
2: मैं भी एक चुटकुला कहूंगी, पर एक शर्त है।
1: चुटकुला में भी शर्त? अरे चुप करना यार, पहले इसे बोलने तो दे। ओके बोल सिंपी, क्या शर्त है?
3: मैं जब चुटकुला कहूँ ना तो सब हंसना जरूर।
1: हे भगवान, तूने कैसे कैसे नमूने बनाए हैं।
3: मुझे नमूना ना कहो, मैं किसी से बात नहीं करूंगी।
1: सॉरी सॉरी, चल अब कहो क्या कहना है।
3: बताए बताए। एक बार मिस्टर शर्मा अपना दांत निकलवाने डेंटिस्ट के पास गए। डॉक्टर ने कहा मुंह खोलो, शर्मा जी ने मुंह खोला। डॉक्टर ने कहा और खोलो, शर्मा जी ने मुंह खोला। डॉक्टर ने कहा और खोलो, शर्मा जी को गुस्सा आया और वे डॉक्टर से बोले, इतना मुंह खुलवा रहे हो क्या, अंदर बैठकर दांत निकालोगे? क्या हुआ? अच्छा नहीं था। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो?
1: तेरे चुटकुले पर पागल।
3: तुम पहले क्यों नहीं हंसे?
1: वो तो हम यूं ही।
3: तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे थे।
1: तो क्या तुम चुटकुला सीरियसली सुना रही थी?
3: तुम लोग ऐसा करोगे ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी।
1: ओफो यार, ये इमोशनल अत्याचार कर रहा है हम सबका समय बेकार।
4: अरे वाह टीना, तू तो
1: क्या करें, अब थोड़ा बहुत तो।
4: अब अपनी तारीफ पर इतना मत ज्यादा। सुन अब मैं कुछ कहती हूँ।
3: तू अब क्या कहेगी?
4: क्यों, मुझे चुटकुले नहीं आते क्या?
3: ओके ओके बाबा, चल सुना।
4: एक बार टीचर ने बच्चों से कहा।
5: क्या कहा?
4: चुपचाप मुंह पर उंगली रखकर सुनो।
1: मुंह पर उंगली रखकर भी बोल सकते हैं क्या?
4: शट अप। अरे यार कोई तो इसको चुप कराओ।
3: टीना चुपचाप सुनो ना जो याशिका कह रही है, नहीं तो।
1: अरे मालूम है, नहीं तो तू बात नहीं करेगी।
4: नहीं ये तो चीटिंग है।
1: साइलेंस साइलेंस साइलेंस प्लीज। अब याशिका जी आपके सामने एक चुटकुला पेश करने जा रही है।
4: एक बार एक टीचर बच्चों को होमवर्क देती है।
5: अच्छा।
4: कि कुत्ते पर 10 लाइन लिख कर लाओ। अगले दिन कोई लिख कर नहीं लाया।
5: क्यों?
4: और एक बच्चे के हाथ पर पट्टी बंधी थी। टीचर ने पूछा क्या हुआ, होमवर्क क्यों नहीं किया? तो जिसके हाथ पर पट्टी बंधी थी वो लड़का बोला, मैडम होमवर्क करने की बहुत कोशिश की पर कोई कुत्ता हाथ नहीं आया जिस पर 10 लाइनें लिख सके। एक को जबरदस्ती पकड़ा तो हाथ पर काट गया।
1: कुत्ते।
2: ओह माय गॉड।
1: अच्छा सुनो सुनो सुनो सुनो, मुझे भी एक और याद आया है।
2: क्या
1: क्या चुटकुला? और क्या सुनाओ।
2: हाँ हाँ, तू तो अपने आप में एक चुटकुला है।
5: हाँ, ये बात सही है।
2: देखते ही हंसी आ जाती है। तू तो एक काम कर, 2 मिनट चुप खड़ी हो जा, हंसी अपने आप आ जाएगी।
1: अच्छा तू क्या मुझे जोकर समझती है? मैं ना तेरी तेरी ना मैं इतनी
3: मैं क्या क्या क्या क्या है ना,
5: लड़ो लड़ो ना। हम भी देखेंगे कैसे लड़ते
6: हैं। अरे छोरिया क्यों चिल्ला रही हो, अभी बहन जी आएगी तो सबको हका करेगी।
4: मैडम आएंगी तब हका करेगी ना।
6: सब बहुत बदमाश हो गई हो, अभी प्रिंसिपल इधर आएगी तो अकड़ ठिकाना आ जाएगी सबकी।
1: सॉरी भैया सॉरी, इन सबकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, पर प्रिंसिपल जी से जाकर जरा कह दे कि जल्दी इधर आ जाए।
6: हम लोगों से तो बात करना ही बेकार है।
3: ये हमारे स्कूल के एक अलग ही प्रिंसिपल हैं, इतना तो प्रिंसिपल भी नहीं डांटते जितना ये हमें सुना जाता है।
1: और क्या, हमारी तो कोई जैसे इज्जत ही नहीं है।
3: लो ये आए इज्जत वाले।
1: अरे तो फिर से,
3: मैं तो कह रही हूँ क्यों भाई।
4: अरे यार झगड़ो तो मत।
3: तो क्या करे,
1: अपनी अंताक्षरी चालू रखते हैं। अंताक्षरी तब तो मैं गाना गाऊंगी।
4: गाना और तू।
3: गाने दे याशिका, गाने दे, नहीं तो फिर से बुरा मान जाएगी। गा तू गा।
1: ठीक है। ध्यान से सुनना। टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग टिंग।

0: डर लगा? देखा कितना हॉरर गाना है, ऐसा लगता है जैसे भूत सामने खड़ा है।
1: डर भूत से नहीं लगा
0: तो
1: डर मुझे तेरे गाने से लगा। क्या गाती है तू, ऐसा गाना सुनकर तो भूत भी अपनी मम्मी की गोद में छुप जाए।
2: मम्मी,
3: अरे क्या हुआ यार, इस तरीके से क्यों हंस रहे हो तुम लोग?
0: कुछ नहीं, बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि ज्यादा डर लगे तो जोर जोर से हंसना चाहिए, डर भाग जाता है।
3: तुम मेरे गाने की तारीफ कर रहे हो या मेरी मजाक उड़ा रहे हो?
1: तौबा तौबा, कोई तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है भला?
3: है, तब ठीक है, तो फिर मैं एक और गाना गाती।
1: अरे मैं आ गई,
0: मैं आ गई। क्या हुआ?
1: ओए लुपटा आया, बड़ा मजा आया।
3: याशिका की बच्ची, तूने हमें बेवकूफ बनाया।
1: यार आज यूं ही स्कूल आए, अपनी तो ना किस्मत ही खराब है।
3: खराब नहीं है, बहुत अच्छी है, समझी?
1: वो कैसे?
3: टीचर नहीं बता रही थी कि हमारे इंडिया में लड़कियों को पैदा होते ही मार देते हैं। तो क्या अब तुम लड़की होकर भी जिंदा हो और मजे कर रही हो? तो हो ना खुश नसीब।
1: हाँ यार, ये तो बात है, पर
3: क्या?
1: टीचर ने जब इसके बारे में बताया तो मैंने डैडी से इसके बारे में पूछा,
0: तो डैडी ने क्या बताया?
1: डैडी ने कुछ नहीं बताया, थोड़ी देर चुप रहे और बोले मम्मी से पूछ लो।
3: ऐसा उन्होंने क्यों कहा?
1: क्या पता, पर मम्मी ने भी कुछ नहीं बताया। तब मुझे
3: क्या,
1: मुझे शक हुआ कि डैडी मम्मी कुछ छुपा रहे हैं।
0: फिर
1: क्या, मैंने दादी से पूछा, पहले तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, पर बाद में।
3: क्या बाद में, जल्दी बता।
1: मेरी दो बहनें और थीं, मुझसे बड़ी।
3: पर एक बात बता, फिर तू कैसे?
1: मम्मी की हिम्मत की वजह से।
0: छोड़ो ना यार, हम भी क्या ले बैठे हैं। अच्छा ये बताओ, अभी डांस करना कौन पसंद करेगा?
4: डांस?
3: और क्लासरूम में म्यूजिक कहाँ है भाई?
0: उसका इंतजाम है, ये देखो।
5: आईपॉड।
3: ओह माय गॉड,
5: स्पीकर भी है।
3: अगर टीचर ने देख लिया तो?
0: चुपचाप जाकर दरवाजा बंद कर दो, हम म्यूजिक धीरे धीरे चलाएंगे।
3: वाओ दैट्स ग्रेट यार।
5: क्या हो रहा है?
1: कुछ नहीं सर।
5: कुछ कैसे नहीं, अंदर से आवाजें आ रही थी।
0: वो तो सर हम बोल बोल कर याद कर रहे थे।
1: बोल बोल कर, बोल बोल सर,
0: बोल बोल
5: कर। शट अप, दरवाजा बंद क्यों था?
1: वो सब पास की क्लास की गर्ल्स ना यहाँ के डिस्टर्ब करती हैं।
4: हाँ, हाँ।
5: और वो बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं?
0: वो पता नहीं सर।
5: किसका पीरियड है?
0: मैथ्स का सर।
5: कौन पढ़ाता है?
1: निहारिका मैम।
5: अच्छा, आज उनकी पल्स पोलियो में ड्यूटी है, आप लोग चुपचाप शांति से अपना काम करो।
0: ओके सर।
3: चलेगा, थैंक गॉड।
0: स्टूडेंट की भी क्या लाइफ होती है, जो भी आता है डांट कर चला जाता है।
3: और क्या, अरे हमारी तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं है।
0: पर एक बात है, इन टीचर लोगों के मजे तो बहुत होते हैं।
3: ये बात तो बिल्कुल सही है।
1: क्लास में टीचर कहती है घर से पढ़कर आया करो, और घर में मम्मी कहती है स्कूल में क्या करते हो। हम तो दोनों तरफ से फंसे रहते हैं।
0: इनके चक्कर में जब नंबर कम आते हैं तो दोनों टीमें हमारे ऊपर चढ़ाई कर देती है।
4: और क्या?
3: अरे ऊपर से दिन भर घर में भी और स्कूल में भी, ये करो ये मत करो, वो करो वो मत करो, यहाँ जाओ वहाँ बैठो। हे भगवान,
1: डायरी में नोट डाल दिया जाता है कि फला कंपटीशन है, इतने पैसे लेकर आ जाना।
3: हाँ यार, और ऐसे नोट पर तो हमेशा डांट पड़ती है। इन सब के बावजूद भी यार एक बात है, स्कूल स्कूल है और टीचर टीचर,
1: स्कूल स्कूल है और टीचर टीचर, क्या खाक स्कूल है और टीचर फट टीचर। अच्छा एक बात बता, आजकल स्कूल कौन चलाता है?
0: पागल, इतना भी नहीं पता, स्कूल टीचर के भरोसे चलता है।
1: गलत, आजकल स्कूल चलता है कंप्यूटर के भरोसे और इंटरनेट के भरोसे।
3: एग्जैक्टली, ये बात तो है। आजकल टीचर क्लास में पढ़ाती कम है और इंटरनेट से डाउनलोड ज्यादा करवाती है।
0: और क्या, अब जो चीज कोर्स की किताबों में नहीं मिलती वो हम कंप्यूटर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो बताओ, स्कूल कंप्यूटर चला रहा है या नहीं? टीचर तो स्कूल में सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं।
3: ऐसे मत कहो यार, ऐसी बात नहीं है।
1: टीना सही कह रही है,
3: कंप्यूटर के आने से ऐसा थोड़ी है कि टीचर ने अपना काम बंद कर दिया है।
1: तो तुम ही बताओ, आजकल टीचर के पास क्या काम रह गया है?
3: तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तुम क्या कहना चाह रही हो?
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब सारा काम कंप्यूटर से ही करना है तो टीचर का स्कूल में क्या काम?
3: यहाँ आकर तुम्हारी सोच गलत साबित हो रही है।
1: अच्छा तो तुम बताओ सही क्या है।
3: सुनना चाहती हो तो सुनो, ये सही नहीं है कि आज टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है जिसका उपयोग हमारी शिक्षा में भी होने लगा है, पर
1: हाँ हाँ बोलो, चुप क्यों हो गई?
3: दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी हमें नई नई जानकारी दे सकती है, हमें शिक्षा में मदद कर सकती है, लेकिन हमारा मार्गदर्शन तो हमारे टीचर से ही मिलेगा ना। टीचर का मार्गदर्शन ना हो तो ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे किसी काम की नहीं है।
1: टीना, तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
0: ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। वाकई हमारी जिंदगी में टीचर कितना महत्व रखता है।
3: और हम हर वक्त टीचर को कोसते रहते हैं। बताओ अब तुम्हारा क्या कहना है?
1: ओके बाबा, मैं गलत थी, पर आज मेरी आंखें खुल गईं। अब आगे से
0: टीचर के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचेंगी।
1: अब तो मैं क्या किसी और को भी नहीं सोचने दूंगी।
0: ये हुई ना बात, तो चलें।
3: कहाँ, अभी तो मुझे एक और गाना गाना है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा में झलकी स्कूल। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गैर फिल्मी गजल।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। 8:45 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत

0: लिए किया जाएगा। अब संरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में डीआरडीओ को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन डीएफपी 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि डीएफपी 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्र

0: पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। वहीं देर रात 2 जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के

0: कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FMN 103.7 MHz पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमे चैनल। रात्रि के ठीक 9 बज रहे हैं श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम दर्द भरे गीत। आइए इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

दर्द भरे गीत कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं फिल्म खुदा गवाह का ये गाना, जिसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज ने।

आइए श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं मधुमती फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

मधुमति फिल्म के इस गीत के साथ ही दर्द भरे गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी नागौर का चिरमी चैनल। रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी मुंबई और सुनवाते हैं विविध भारती द्वारा प्रसारित कार्यक्रम।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ,
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: लीजिए सुनिए दस्तक फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम के अंतिम पेशकश जुर्माना फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आडिबर्मन का बोल आनंद बख्शी के।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जुर्माना में सुना। आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आप

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट हैं, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाजें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज मेरी लड़की जैसी थी, तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात यह थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जैसे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं, एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर प्रिंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है उसकी इच्छा होती है गाने की तो वो अपनी आवाज़ में गाता है, लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था, तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनक्रेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया, फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी, तो वहाँ लोगों को तो पड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे, और मुझे पता भी नहीं था। और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच्चा

फूलों से, तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

0: वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम की छोटी सी झलक यहां भी।
1: इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सा लवर इस बच्चा लोग को? ये पालता, ये मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अम्मा अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे, उनके जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण FM 103.7 MHz पर। हम आकाशवाणी नागौर के चिरमी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बज रहे हैं श्रोताओं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 8:49 पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।